हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये तो सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तो दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महक। तो श्रोताओं कर देना अजय दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत के कहने वहाँ सारे यहीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने।

0: टंगरियां जो चार तरांजू मिंजो सदे वो बसरिया जी तान मने लगे।
1: ये तो हमें अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश होता तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इं बनी रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज

मोहल्ला कहते हैं ना, रेडियो गुंजन, धर्मशाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना। माटी थी महक जी श्रोता होता बढ़ देना कार्यक्रम से अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इन्हें बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
3: अरे मरी क्या,
4: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
3: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
4: फोटो पर? मेरे बाप तो जिंदा है।
3: तिलक साहब जिंदा है?
4: तिलक?
3: हाँ।
4: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
3: रसिकलाल, लोकमान्य तिलक, ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
4: मुझे माफ कर दीजिए।
3: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
4: रोड किसी के बाप का नहीं है।
3: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
5: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
6: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
5: या आपको एक फोन आएगा।
7: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
5: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
7: क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते,
6: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
7: रिसीव करते वक्त नहीं।
6: तो याद रहे,
8: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
9: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
10: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
9: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
10: आप चिंता ना करें।
9: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
10: पर दूसरे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये कहा है? ये तो खोटा सिक्का है। और ये कहा है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
11: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
11: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
12: ले जाएं, पक्का?
11: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हो।
14: अभी बताती हूँ बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
16: गजब बेइज्जती है।

MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

102.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: आलू की भाजी, बैंगन का भरता,

0: तक ना आओगे।
1: ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: 92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा

107.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

शक्कर लाते थे

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है मजा

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

अरे झूठ है या सच है ये तुम जानो। अरे झूठ है या सच है।

95.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोतो आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

99.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

99.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

दशमलव 2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आज के

चौधरी डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक निवास ओकओवर से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ सीटीओ मार्ग से होते हुए इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में सम्पन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल भी शिक्षा का एक स्वरूप है। जिस प्रकार विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ियों को भी खेलों में उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर में ऑकलैंड टनल के निकट नवनिर्मित बहुमंजिला कार पार्किंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पार्किंग सुविधा ऑकलैंड टनल क्षेत्र और उसके आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने, सड़क किनारे होने वाली पार्किंग की समस्या से छुटकारा पाने तथा वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए कानून बनाया है, जिसके तहत निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार इन बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभा रही है। सरकार न केवल उनकी शिक्षा और पालन पोषण का पूरा खर्चा वहन कर रही है, बल्कि उन्हें जेब खर्च, भ्रमण और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि उन्हें कभी ये महसूस न हो कि उनके माता पिता उनके साथ नहीं है। वर्तमान राज्य सरकार इस पहल के अंतर्गत प्रदेश के इन बच्चों की 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, पालन पोषण और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त उन्हें नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग तथा अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्राहकों की सुविधा हेतु दिनांक 22 जून से शाखा डाकघरों में ईकेवाईसी आधारित लेन देन की डिजिटल सुविधा मुहैया करवा दी है। अब आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बचत खाते, आवर्ती खाते एवं सुकन्या समृद्धि खातों में निर्धारित सीमा तक बिना किसी दस्तावेजी औपचारिकता के 50,000 रुपए तक जमा और बचत बैंक खातों से 20,000 रुपए तक निकालने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पात्र खाताधारक किसी भी शाखा डाकघर से लेन देन कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के खाता धारकों को आसानी होगी। पश्चिम एशिया शांति समझौते की घोषणा के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इससे सरकारी तेल कंपनियों को होने वाला घाटा काफी कम हो चुका है और अब इनके लाभ में सुधार होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी रिफाइनरियों और खुदरा ईंधन विक्रेताओं के पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर संयुक्त मार्जिन अब हाल के पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर से ऊपर है। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित पेंशन एरियर का 100% भुगतान जुलाई में करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन के शेष सभी बकाया का भुगतान अगले महीने कर दिया जाएगा। बागवानी विभाग में 450 पद भरने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 50 बागवानी विकास अधिकारी सुखविंदर सुक्खू, 100 बागवानी जागरण अकाई विस्तार अधिकारी और 300 मल्टीटास्क कर्मियों के पद शामिल है। इन पदों को अंतिम स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखा जाएगा। सरकारी डिपो से सब्सिडी पर मिलने वाले सरसों के तेल के लिए उपभोक्ताओं को इस महीने भी इंतजार करना पड़ सकता है। संभावना है कि जून के अंतिम दिनों में डिपो तक तेल पहुंचना शुरू हो जाएगा। डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल अब 160 रुपए प्रति पैकेट मिलेगा, जिसमें लगभग 7 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्यटन नगरी धर्मशाला से अब रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी और शिकायत निवारण की प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण किया जाएगा। सोमवार को नगर निगम धर्मशाला के पुराने कार्यालय में
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कार्यालय शुरू हो गया। इससे संबंधित मामलों की सुनवाई और जांच कार्य अब यही होंगे। रेरा एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो भवन निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट की गुणवत्ता, सड़क, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की विस्तृत जांच करता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कृति गीतांजलि का कन्नड़, तेलुगु और मलयालम समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद शुरू किया है। ये पहल संस्थान के टैगोर अध्ययन केंद्र के माध्यम से की जा रही है। इस पहल से नई पीढ़ी भी गुरुदेव के प्रवचनों से रूबरू होगी। इसका उद्देश्य टैगोर के साहित्य और विचारों को देश के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर आज शिमला के रिज पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य के विकास में वीरभद्र सिंह के योगदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के एक महान नेता थे जिन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज हम उनके अमूल्य योगदान को स्मरण कर रहे हैं। प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में जुलाई महीने में फिर से प्रदेश के लाखों एपीएल उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा ही मिलेगा। केंद्र की ओर से एपीएल उपभोक्ताओं के आटे में पिछले 5 महीने से लगातार कटौती की जा रही है। इस दौरान ट्राइबल क्षेत्रों में सप्लाई भेजने के नाम पर कटौती होने का हवाला दिया जा रहा है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये कहा है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये कहा है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा।

गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला और फ्रीक्वेंसी है 91.2 एफएम। और आज के शो के लिए मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और मेरे साथ टेक्निकल असिस्टेंट हैं मैडम शशि। सारे दिनों की छुट्टी काट करके शशि वापस आई हैं। आपको भी एहसास हुआ होगा कि शशि नहीं थी आपसे बातचीत करने के लिए दो से तीन वाले शो में, है ना। तो हम शशि का वेलकम करते हैं और आप सबका भी वेलकम करते हैं हमारे इस शो में, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। बने रहिएगा हमारे साथ कम से कम 11 बजे तक, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। उसके बाद तो हमारे सारे कार्यक्रम पूरा दिन भर चलते ही रहते हैं, आप आनंद उठाते रहते हैं। 12 बजे भी एक बड़ा इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम हमारे यहाँ से आता है, कभी मेरे हौसलों की उड़ान और कभी मन संवाद, तो कभी कुछ और स्पेशल प्रोग्राम होते ही हैं। और साथ साथ में आप गाने एंजॉय तो करते ही रहते हैं सारा दिन भर, लेकिन ये स्पेशल कार्यक्रम होता है जिसमें कि हम आपको जानकारियाँ देते हैं और साथ साथ करते हैं, करवाते हैं आपका मनोरंजन भी और अपने मन की बातें भी करते हैं आपके साथ। तो मौसम का हाल चाल अभी जानना चाहेंगे या फिर एक गीत के बाद? मुझे लगता है एक गीत हो जाना चाहिए। तो जो लोग नहीं अभी पहुंचे हैं, रेडियो सेट्स जिन्होंने ऑन नहीं किया है, उन सभी के लिए ये गीत जल्दी जल्दी से आ जाइए भाई।

0: आगे
1: श्रोताओं, तो लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। इस समय प्रोग्राम पेश कर रही हूँ आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो चलिए चलते हैं हम मौसम की ओर। धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान क्या बना हुआ है? इस समय 28 डिग्री सेल्सियस दिखाया जा रहा है गूगल बाबा द्वारा। हवा में नमी है 55%। और हमें पता है आपको किसका इंतजार है, आप ये जानना चाहते हैं बारिश होगी या नहीं होगी। तो बारिश की संभावना है, दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने की 80% संभावना है। इस वक्त तो आंशिक रूप से धूप खिली हुई है और अगर आपके यहाँ पर तेज धूप खिली हुई हो तो भैया आप गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि हमें जो गूगल द्वारा दिखाया जा रहा है हम वही बात कर रहे हैं आपसे। और दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 3 से 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है या चलेगी।

और जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 जून का जो हमारा दिन था वो था सबसे बड़ा दिन, और उसके बाद दिन जो है वो धीरे धीरे धीरे मतलब दिन और रात जो है वो धीरे धीरे धीरे जाकर के एक जगह पर पहुंचेंगे और हो जाएंगे स्टैग्नेंट यानी कि बराबर, और फिर उसके बाद दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमारी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। यूं ही दिन रात चलते रहते हैं और यूं ही मौसमों का क्रम भी चलता रहता है श्रोताओं।

चालाक फिल्म का ये गीत सुना भी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में ले लेते हैं आज का विचार। कल क्या होगा ये सोच करके आज की खुशी को बर्बाद न करें, क्योंकि जो आज हम मेहनत और लगन से करते हैं वही तो हमारे कल को बेहतर और शानदार बनाता है। बात और कहना चाहूंगी कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला चाहिए। कल के बारे में सोचकर ना आज की खुशी को बर्बाद करें और ना ही ये सोचकर कि अब तो हमें मंजिल मिल गई है, बस अब क्या करना है, हो गया काम खत्म, जो हमने चाहा वो मिल गया, हमने पा लिया। लेकिन आपको पता है सफल लोग वही होते हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं, वो इस बात पे रुक नहीं जाते कि उन्होंने जो सोचा था उनको वो मंजिल मिल चुकी है। क्योंकि ज़िंदगी में रास्ते होते हैं और रास्ते कभी भी ख़त्म नहीं होते। देखा है कभी आपने रास्तों को ख़त्म होते हुए कहीं पर जाकर के वो बंद हो जाए? मतलब हाँ, अगर आप कहेंगे कि छोटे मोटे रास्ते जो होते हैं जो आपके घरों तक जाते हैं वो कहीं ख़त्म हो भी सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े रास्ते होते हैं नेशनल हाईवेज, देखा है कभी कहीं ना कहीं किसी या किसी और सड़क से मिल ही जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि हमें ये तय करना है कि हमें कहाँ पर जाकर के रुक जाना है। लेकिन जिंदगी जो चलती रहती है ना, वो तो कभी नहीं रुकती। आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 9:20 पर आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। बस आपसे मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद 9:30 पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:20

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने आज रात 12 बजे से चक्का जाम करने का किया ऐलान। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया की शुरू। 1500 रुपए प्रतिदिन मानदेय निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बावजूद जनादेश हथियाने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित। सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निर्धार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यूनियन और राज्य सरकार के बीच कल हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने यह निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण विवश होकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के लिए हमें ले रहे हैं। हमें 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राज्य की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: एचआरटीसी चालक परिचालक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयनित चालकों को विभिन्न डिपुओं में आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर तैनात किया जाएगा। निगम ने चयनित चालकों के लिए 1500 रुपए प्रतिदिन मानदेय निर्धारित किया है। ये नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी। एचआरटीसी प्रबंधन के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसी मकसद से ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन व किसानों को लाभान्वित करने के लिए बागवानी विभाग को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हारने के बाद भी जनादेश हथियाने का आरोप लगाया है। मंडी जिला के तत्तापानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम आए 1 महीने का समय हो चुका है, मगर सरकार अभी तक ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य स्थानीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा समर्थित विजयी प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया जा सके। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता संभालने के बाद 2500 से अधिक संस्थान बंद करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने ये सभी संस्थान जनता की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खोले थे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी अटल टनल देश दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि इस टनल का दीदार करने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है।
3: कुल्लू जिला के मनाली से आगे धुंधी में बनी अटल टनल देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन किया था तथा सामरिक दृष्टि से भी ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ले को सेना की जरूरत का सामान भी यहीं से होकर जाता है। अटल टनल रोहतांग अपने लोकार्पण के बाद से ही देश दुनिया के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। मनाली घूमने आने वाले पर्यटक इस टनल का दीदार करना नहीं भूलते हैं। मनाली में इन दिनों पर्यटक सीजन चला है तथा हर दिन काफी संख्या में वाहन अटल टनल से आर पार हो रहे हैं। बीते सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार 3 लाख से अधिक सैलानी अटल टनल से आर पार हुए। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों में सक्रिय सहयोग का आश्वासन किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है। इस बीच मौसम विभाग ने कल यानी 25 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तेज हवाएं व अंधड़ चलने का भी अनुमान है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। HRTC चालक परिचालक संघ की चक्का जाम संबंधी खबर पर अमर उजाला और दैनिक जागरण की लगभग एक जैसी सुर्खी है, नहीं माने निगम कर्मचारी, आज रात से बसों की हड़ताल, सरकार ने

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने आज रात 12 बजे से चक्का जाम करने का किया ऐलान। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया की शुरू। 1500 रुपए प्रतिदिन मानदेय निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बावजूद जनादेश हथियाने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित। सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: जी श्रोताओं, तो हम वापस आ गए हैं अपने वादे के मुताबिक। 9:30 हो चुके हैं और ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो चलिए कार्यक्रम में एक गीत सुनते हैं पहले और फिर करेंगे आपसे बातचीत।
1: फिल्मी गाने के नए वीडियोज़

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। बंदिश फिल्म का ये गीत सुना आप सभी ने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। बड़ा ही कूल सा ये गीत था। श्रोताओं, थोड़ी सी जानकारियों की ओर चलेंगे हम। आपके लिए लाए हैं जानकारियां कि धर्मशाला मंडल के 608 रूटों पर पड़ेगा असर। ये जो हड़ताल की बात हो रही है ना, चालक परिचालकों की हड़ताल की स्थिति में धर्मशाला मंडल पर इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है।

कर्मचारी संगठनों के अनुसार मंडल के करीब 608 छोटे बड़े बस रूट जो हैं वो प्रभावित होंगे। समझाला मंडल चालक यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप और परिचालक यूनियन के अध्यक्ष साहिल चौधरी ने बताया कि प्रदेश स्तर से जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार आगामी रणनीति तय की जाएगी। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि चालक परिचालक हड़ताल पर जाते हैं तो आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं तो नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रोताओं, हमारे सामने तो शाम को एक खबर भी आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस हड़ताल के चलते कुछ टेम्परेरी चालकों की भर्ती करने की कोशिश कर रही है सरकार, कि कुछ टेम्परेरी जो राहत है वो आम जनता को दी जा सके। तो उसके लिए आज 12 से लेकर 1 बजे तक HRTC रीजनल मैनेजर के कार्यालय में जो है वो बुलाया गया है कुछ टेम्परेरी चालकों को। अगर वो आना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं और आगे की रणनीति कैसे तैयार की जाएगी तो आज उन्हें बुलाया गया है। तो जो भी चाहते हैं काम करना तो वो वहाँ पर जा सकते हैं।

साथ आपको बता दें कि कालका माता मंदिर शमीरपुर में मेले के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पशुओं आवारा हम पशुओं से फिलहाल तो हमें निजात नहीं मिल रही है। गग्गल में सांड के हमले से एक व्यक्ति घायल हो चुका है। पागल कुत्ते ने 9 लोगों को काट डाला है। और ये खबर है रप्पड़ पंचायत के गांव खड़ोल से मंगलवार को उनकी ये खबर कि पागल कुत्ते ने 9 लोगों को काटा। और खड़ोल में ही कुछ लोगों ने पाइपें चोरी कर ली हैं। अब देखिए ना, ये पानी की पाइपें थी और अगर यूं कहूं कि इसमें सरकारी महकमे का भी नुकसान होता है तो कुछ गलत नहीं होगा। देखिए 10 वहां से रेंजिंग लाइन की करीब 10 पाइपें गायब हो चुकी हैं। जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता कुंदन चौधरी ने बताया कि उन्होंने गंगत पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कांगड़ा शहर की सफाई में टीम जुट गई है। सफाई कर्मी दुकानों के आगे बनी नालियों को साफ कर रहे हैं। नालियों के अंदर जल शक्ति विभाग की पाइपें जा रही हैं। और अब टांडा के मेडिसिन सर्जिकल वार्डों में शौचालयों पर लग गए हैं ताले। लोगों का कहना है कि सभी विभाग अपना अपना समय पास कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि यहाँ पर एक दूसरे पर बात फेंक करके मतलब दे करके इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, काम लटकाए जाते हैं। और इससे पहले लिफ्टों के काम को लेकर के कॉलेज प्रबंधन ये कहता रहा कि पैसे दे दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग कहता रहा कि पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। और अब बाथरूमों के तालों पर एक दूसरे पर फिर से बात फेंकी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मामलों में लोग परेशान होते हैं और हो रहे हैं, लेकिन मजाल क्या कि किसी बड़े अधिकारी या नेता ने इस गेंद को एक दूसरे के पाले में फेंकने का नोटिस लिया हो। और वहां पर जो रोगी हैं उनका कहना है कि बदबू वहां पर दिन रात चली रहती है। मेडिसिन वार्ड में एक महिला रोगी कि परिजन ने बताया कि उनका बिस्तर बाथरूम के साथ है और बाथरूम से इतनी बदबू आती है कि वहाँ पर बैठना भी दूभर हो जाता है। तो बता दें कि हाल ही में इन शौचालयों की लीकेज के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च किया गया। इसके बावजूद यदि शौचालयों की पानी की लीकेज बंद नहीं हो रही है तो इतने पैसे का मिसयूज़ ही हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है, कहाँ गया वो पैसा, इन सारी बातों पर प्रश्न उठना लाजमी है। ऐसे प्रश्न तो उठेंगे ही। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर बीमारी जो है वो ठीक करवाने के लिए लोग आते हैं, परंतु लगता है कि जो उनके साथ परिजन आए हुए हैं वो भी बीमार होकर के वहीं भर्ती हैं। और अगर व्यवस्था पर तंज है तो इसका जीता जागता उदाहरण तो अभी मैं हाल ही में देख करके आई हूँ। श्रोताओं, आपसे साझा ज़रूर करूँगी उस बात को भी। फिलहाल हम फिर से चलेंगे मनोरंजन की ओर। जी हाँ, आपको आपका मनोरंजन करवाना कैसे भूल सकते हैं हम। धर्मात्मा फिल्म का ये गीत है। गीत को गाया है मुकेश नहीं। मुकेश और कंचन नहीं।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कंचन और मुकेश की आवाजों में। श्रोताओ 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

देखिए, अभी इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे व्यवस्थाओं की, कि हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपसे कहा था कि मैं हाल ही में देख करके आई हूँ, पिछले दो दिन यानी कि कल और परसों हमारे कॉलेज ऑडिटोरियम में नाट्य रंग षष्ठी कार्यक्रम था और उसमें दो नाटक जो हैं वो प्रस्तुत किए गए, रिपर्टी कंपनी और भाषा और हमारी जो भाषा अकादमी है उसके द्वारा संयुक्त तत्वाधान में वो थे। पहला नाटक था, परसों का नाटक था ताजमहल का टेंडर, और उस नाटक ने इतनी सुर्खियां तो बटोरी ही, लेकिन वहाँ पर ना लोग बहुत कम आए थे क्योंकि शायद लोगों तक पहुँचा नहीं था। हमने यहाँ से एक दो बार अनाउंसमेंट की भी, मैंने खुद की थी, बताया था लोगों को कि इस तरह का कोई कार्यक्रम होने वाला है, आप जाइएगा ज़रूर। जिन जिन लोगों तक बात पहुँच गई वो आए भी, कुछ लोग लेट भी आए, थोड़ा सा समय कम रह गया था तब आए, लेकिन वो जो नाटक था ना उसने हमारी व्यवस्था कैसे चलती है, मतलब 25 साल लग गए एक बिल्डिंग का टेंडर पास होते होते, तब तक तो वो जो व्यक्ति था वो भी निकल लिया। और जो कल का नाटक था उसके बारे में भी बात करते हैं। कल का जो नाटक था वो शुरू हुआ था 5 बजे, 5:30 बजे के करीब, और रात्रि 8 बजे ख़त्म हुआ। सोचिए कितना लंबा नाटक होगा, और उस नाटक ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, बहुत तालियां भी बटोरी, हालांकि इतनी ज़्यादा भीड़ तो कल भी नहीं थी ऑडिटोरियम में, लेकिन तालियां इतनी ज़्यादा थी कि शायद भीड़ होती तो भी उतनी ही तालियां होती जितनी कल थी, क्योंकि मैं भी उसकी एक जीती जागती पार्ट थी, मैं भी वहीं पर मौजूद थी तो हमें पता है। और जो खबर आई है वो खबर कुछ इस तरह की है, धर्मशाला कॉलेज के अंतरंग सभागार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच द्वारा आयोजित नाटक बाबूजी, जी हाँ उसका नाम था बाबूजी। और बाबूजी ने मंच पर उतरते ही दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस बेहतरीन प्रस्तुति के माध्यम से कलाकारों ने रंगकर्मियों के वास्तविक जीवन के सामाजिक आर्थिक संघर्ष और कला के प्रति उनके अटूट समर्पण की दास्तान को मंच पर जीवित कर दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच द्वारा आयोजित हिम रंग षष्ठी ग्रीष्मकालीन नाट्य उत्सव के धर्मशाला संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हो गया इसी के साथ। और ये विशेष इस विशेष अवसर पर कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। और लेखक मिथिलेश्वर की चर्चित कहानी पर आधारित नाट्य बाबूजी का मंचन किया गया। लोगों की तो खूब वाहवाही मिली ही, लेकिन जब हमने एडीसी विनय कुमार जी से बात की तो उनका ये कहना था कि मुझे लगा कि ये नाटक है और नाटक में क्या ही होगा, तो उनकी कोई फाइल पेंडिंग थी जिसको कि उन्होंने साइन करना था, तो उनका कहना था, उन्होंने स्टेज से ये अनाउंसमेंट किया कि मैंने सोचा कि 15-20 मिनट वहाँ पर बैठ करके और फिर मैं फाइल साइन करने के लिए चला जाऊँगा, लेकिन इस नाटक के मोहपाश ने मुझे ऐसा बांधा कि मैं वहाँ से उठ ही नहीं पाया, और मेरा मन किया कि मैं और देखूँ, आगे देखूँ आखिरकार अंत होता क्या है इस नाटक का। और ये भी उनका कहना था कि उन्होंने पहली बार नाटक देखा है और इतना हसीन इतना खूबसूरत नाटक कि उनको वो जो फाइल थी ना जिस पर उन्होंने साइन करना था वो उन्हें वहीं पर उसी ऑडिटोरियम में मंगवानी पड़ी। और हम सब ने देखा कि जो नाट्यकर्मी थे वो भी रुक गए थोड़ी देर के लिए कि चलिए आप फाइल साइन कर लीजिए क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए है, हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों जिनको कि साइन करना इसी वक्त ज़रूरी है, तो वो नाटक भी थोड़ी देर के लिए उन्होंने रोक दिया कि वो अपने इत्मीनान से अच्छे से पढ़ करके साइन कर दें और उसके बाद फिर वो नाटक दोबारा से चला। हमारा कहना यह है कि हमने भी यहाँ से कई बार इसके बारे में बात की और कुछ पब्लिसिटी भी की गई थी,
लोगों को पता भी चलता है, लेकिन जहाँ पर तो गीत संगीत नाच गाने की बात आती है वहाँ तो सारा ऑडिटोरियम भर भर करके मतलब इतने लोग आ जाते हैं कि वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है, कई बार तो एंट्री भी बंद करनी पड़ती है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तब लोग इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं। कुछ नया होता है, आपको आना चाहिए, जाना चाहिए देखने के लिए। प्रशासन या सरकार कहूँ या कोई भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, इतने एफर्ट्स लगाती है। जो सेटअप कल किया गया था ना, जब उस सेटअप को शाम को जब नाटक के बाद निकाला गया तो मैं देख रही थी कितनी मेहनत उन्होंने की थी उस सेटअप को लगाने के लिए, जिसको निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। तो वो एक गाँव का माहौल था, गाँव का पूरा परिदृश्य वहाँ पर दिखाया गया था, और उसमें वो जो बाबूजी थे जो अब इस दुनिया से चले गए, उनकी पूरी कहानी जो है वो रिपीट की गई। यहाँ पर मैं वो सब कुछ आपको बता नहीं सकती, सुना नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर आप लोग वहाँ पर गए होंगे तो ज़रूर आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से कि मैं सही कह रही हूँ। और आगे से अगर कोई इस तरह की चीज़ें हों तो ज़रूर जाइएगा और ज़रूर देखिएगा, कुछ पल अपनी ज़िंदगी से निकाल करके ऐसी एक्टिविटीज़ को भी आपको देने चाहिए। आगे हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

सफर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो अब बात कर लेते हैं हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अब हिमाचल में लॉटरी सिस्टम जो है वो वापस आ रहा है। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है?

प्रशासन की माने तो लॉटरी टिकट की शुरुआती कीमत जो है वो 2 रुपये रखी गई है, जो अधिकतम 500 रुपये तक भी हो सकती है। और पहला न्यूनतम इनाम कहा जा रहा है कि 10,000 होगा, जबकि बम्पर ड्रॉ में ये राशि 5 करोड़ तक जा सकती है। और ये पहले बहुत पहले चलता भी था, लेकिन बंद हो गया था। फिर अब फिर से कहा जा रहा है कि ये सिस्टम शुरू होने वाला है।

क्यों बंद हुआ और अब दोबारा क्यों शुरू हो रहा है, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1990 के दशक में सिंगल डिजिट या फिर एक या दो अंकों वाली लॉटरी चलती थी। इसमें धोखाधड़ी और गरीब परिवारों और युवाओं के बर्बाद होने की शिकायतें बढ़ने के बाद सरकार ने 1999 से लेकर के 2004 के बीच इसे पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था। अब दोबारा शुरू करने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि हिमाचल सरकार इस समय भारी वित्तीय दबाव और कर्ज से गुजर रही है और इस स्कीम से सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। बाहरी राज्यों की अवैध लॉटरी और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में राज्य का जो पैसा है वो बाहर जा रहा था, जिसे रोकने के लिए सरकार खुद इसे रेगुलेट कर रही है। और सरकार का कहना यह भी है कि लॉटरी से होने वाली कमाई का एक हिस्सा नशा निवारण कोष और खेल गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। लेकिन देखिए, सरकार का जो भी तर्क हो, इसमें जो बर्बाद होंगे वो युवा ही होंगे। कैसे, आइए जानते हैं। देखो, मात्र 2 रुपए की टिकट होने के कारण जो गरीब वर्ग है ना, वो छात्र और बेरोजगार युवा इसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाएंगे, जिसमें उनमें जुए या फिर सट्टे की आदत पड़ सकती है। और युवाओं में रातों रात अमीर बनने की चाह जाग सकती है, जैसा कि होता ही है ना, कि ऐसा होता है कि क्लिक, मतलब फास्ट क्लिक उनको चाहिए, हर कुछ बस अभी हथेली पर रखा और उग जाए, ऐसी इच्छा युवा हमारे करते हैं। पेशेंस नाम की चीज़ उनको है नहीं है, उन्हें लगता है कि बस अभी लॉटरी खरीदी है, अभी उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और बस वो लॉटरी जो है वो हमारे ही पेपर में हो। अब लॉटरी की बात चल रही है तो लॉटरी का ही एग्जांपल दूंगी ना, वैसे तो अनगिनत एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हम बात कर सकते हैं युवाओं के संदर्भ में। और सारे युवा ऐसे नहीं होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, पेशेंस भी होता है उनमें, लेकिन बहुत सारा जो हमारा बहुत बड़ा तबका है वो तो इस ओर अग्रसर हो ही जाएगा ना। तो भले ही टिकट सस्ती हो, लेकिन बार बार किस्मत आजमाने के चक्कर में युवा अपनी जेब तो खाली कर ही बैठेंगे, जिससे कि परिवारों में घरेलू तनाव भी बढ़ सकता है। एक जो नशे की लत है वो लगी हुई है काफी सारे हमारे युवाओं को, और उस पर अब ये लॉटरी का तुर्रा आ गया है। क्या होगा भाई, आप लोग भी आपस में समाज में बैठ कर के बात तो करते ही होंगे ना। हमारे यहाँ पे जो लाइव टेलीफोन नंबर है 7018117091, उस पर कॉल करके भी हमसे आप बतिया सकते हैं, इस बारे में कोई राय रख सकते हैं। 10:30 के बाद का चंक है हमारा, उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसी विषय पर आप बात करें, किसी भी विषय पर आप बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है इसमें आपका क्या योगदान है, आप कैसा सोचते हैं और किस ओर हमारे युवाओं को जाना चाहिए, या कोई भी और टॉपिक जिस पर आप बात करना चाहें। हाँ, हम बता दें अपने श्रोताओं को कि आप लोग हमें फेसबुक पेज गुंजन धर्मशाला से लाइव भी देख रहे हैं इस वक्त। लॉटरी सिस्टम है, इसका सीधा सा अगर मैं एसेंस की बात करूं तो एसेंस यानी कि निचोड़ ये है कि करीब 27 साल के बाद देवभूमि में फिर से लॉटरी, सरकारी लॉटरी की वापसी हो रही है, जिसके नियम सरकार ने तय कर दिए हैं। मात्र 2 रुपए में लॉटरी का टिकट मिलेगा और इनाम 5 करोड़ तक जा सकता है। सरकार का कहना यह है कि इससे राज्य की तिजोरी में हर साल 100 करोड़ रुपए आएंगे, जिसका इस्तेमाल नशा मुक्ति और युवाओं के खेलकूद के लिए होगा। लेकिन श्रोताओं, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जनता के मन में बड़ा सवाल है कि जो चीज युवाओं को सट्टे की लत से बचाने के लिए सालों पहले बंद की गई थी, उसे दोबारा शुरू करने से क्या हमारे नौजवान शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं भटकेंगे? क्या 2 रुपए का ये लालच युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ेगा? इसके बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा, नंबर हमने आपको बता दिया है।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में।

चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम आज के दिन की। तो आज है 24 जून, दिन है बुधवार का, और हमने उन श्रोताओं को मुबारकबाद नहीं दी है अभी तक जिन जो कि आज किसी न किसी खास वजह से अपना खास दिवस मना रहे हैं, तो उन श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो। रेडियो गुंजन परिवार

तो आज की तारीख में क्या क्या घटा था इतिहास में, उस पर बात कर लेते हैं। रानी दुर्गावती की शहादत हुई थी 1564 में। गढ़ा मंडला की वीर गोंड रानी ने आसफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना के विरुद्ध अपने राज्य की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दे दी थी। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए उन्होंने अपने ही खंजर से स्वयं को घायल कर लिया था। मध्य प्रदेश में इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। भारतीय डाक और तार विभाग ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा का शुभारंभ किया, जिससे कि व्यवसायों और सरकार के लिए दूर संचार में क्रांतिकारी बदलाव आया 1963 में। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम मात्र 42 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत का अब तक का सबसे कम स्कोर का रहा है। ये बात हुई थी 1974 में। और सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा था, हालांकि इसने उन्हें मतदान करने से रोक दिया और उनके सांसद विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने उन्हें अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी थी, जिससे कि एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और अगले ही दिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी 1975 में। और श्रोताओ, भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी का निधन हुआ था। वे भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य किया था। 1980 में हुआ था उनका निधन, आज की तारीख में।

0: तो श्रोताओं, कभी कभी भाई सिस्टम भी जो है वो शरारती करता है, और अब इसका मूड नहीं है चलने का। तो कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं कि भाई इसकी आवाज़ वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल हम सुनाते हैं आपको अपनी आवाज़। तो आज रात से थम जाएंगे एचआरटीसी बसों के पहिए, सरकार ने अस्मा लगाया है। तो बात क्या है ये तो आप सभी को पता ही है, और अब निजी बस ऑपरेटर्स चलाएंगे अतिरिक्त बसें। परिचालकों की संभावित हड़ताल के बीच निजी बस ऑपरेटर्स ने आम जनता को राहत देने का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि यदि परिवहन सेवाएं प्रभावित होती हैं तो निजी बस ऑपरेटर अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करने के लिए तैयार हैं और प्रदेश हित में सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। और एक खबर और बता देते हैं आपको, सिंगर अलका याग्निक, ममूटी और विजय अमृतराज को पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और संत निरंजन दास को पद्मश्री अवार्ड जो हैं वो मिल गए हैं, और 65 हस्तियों को मिले हैं पद्म अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 66% हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज, प्रसिद्ध अभिनेता ममूटी और मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक समेत अनेक विभूतियों को सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को जनसेवा और वरिष्ठ पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के माध्यम के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिनमें कि 5 पद्म विभूषण भी शामिल हैं। और इससे पहले 25 मई को आयोजित पहले नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे।
1: दिल अभी

जी श्रोताओं, हमारे बातचीत के साथ साथ ही कोशिश कर रहे थे हम अपने इस कंप्यूटर दोस्त को मनाने की, तो ये भी मान चुका है, आ गया है वापस अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आप सभी को। और हमारा प्यारा माइक जो है हमारा दोस्त, वो तो हमेशा माना ही रहता है, ये तो कभी भी नखरे नहीं करता। चलिए इसी से संबंधित एक गीत भी सुन लेते हैं भैया। आजकल तो लोगों का कोई भरोसा ही नहीं, कब बीच से ही साथ छोड़ करके चले जाएं।

0: जाओ।
1: श्रोताओं, हम बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको छोड़कर यहीं पर हैं। कैसे चले जाएंगे भाई, अभी कार्यक्रम बाकी है, 11 बजे आपसे लेंगे हम अनुमति। तब तक के लिए अभी बहुत सारी बातें हैं हमारे पिटारे में। हम दोनों फिल्म का ये गीत सुना आपने, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, वैसे ना कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ बातें करती रहती हूँ इस तरह की कि जो आसपास अपने घटते हुए देखती हूँ जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही होती हूँ या वापस घर की तरफ जा रही होती हूँ या कभी भी हम सड़क पे चले होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या होता है, किस किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो वो लाइव एग्जाम्पल्स मेरे सामने होते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ। अगर किसी का कोई फ़ायदा होता हो उससे तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हाल फिलहाल में ही पुलिस ने लापरवाही और ख़तरनाक तरीके से कार चलाने पर हरियाणा नंबर की एक कार जो है उसको 3500 रुपये का चालान किया है। पता है किस लिए? एक तो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर और दूसरा जो है वो महिला छत पर बैठी थी या फिर यूं कहें कि सनरूफ से उसने अपना जो धड़ था, शरीर पूरा वो बाहर निकाला हुआ था। और फिर लोग जो है ना वो बाहर के प्रदेशों के वो यहाँ पर आकर के ऐसा कहते हैं कि जो हिमाचल सरकार है वो हमारे साथ अच्छा नहीं करती है या फिर हिमाचल पुलिस जो है वो अच्छा नहीं करती है और जब ये लोग हमारे प्रदेश में आएंगे तो हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे। तो ये अरे देखिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप सही से चल रहे हैं तो ही तो सामने वाले को से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ सही से रहेगा। और अभी कल ही की बात है, दो बच्चे जो हैं वो सनरूफ से बाहर निकले हुए थे और मटौर से खबर आ रही थी कि बहुत ही अजीब से तरीके से वो जो व्यक्ति है जिसकी कार में वो दो बच्चे बैठे थे, हो सकता है उसके अपने बच्चे हों या कोई आसपास रिश्तेदारों के हों, लेकिन वो थे तो सही ना, और वो लोग सनरूफ से बाहर थे और वो जो व्यक्ति था वो कार को इतनी गलत सलत तरीके से चला रहा था और उसने वहाँ मटौर चौक पर जाकर के इस तरह से वो गाड़ी को कट मारा कि ब्रेक लगाई इतने भयंकर तरीके से कि कुछ भी हो सकता था उन बच्चों के साथ भी। तो जो आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है व्यक्ति उसका तो ख्याल कीजिए, आप आसपास में चलने वालों का नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके साथ है उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है क्या? कुछ सोचिए, समझिए और इससे ज़्यादा हम क्या ही कहें, आप खुद समझदार हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक गीत की ओर।

इनकार फिल्म का ये गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें।

जी श्रोताओं, ये गीत आपने सुना इनकार फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, अब हम फिर से जानकारियों की ओर बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि आलमपुर के निजी स्कूल के छात्र ने फंदा लगा लिया है और स्कूल में हो गया है काफी ज्यादा हंगामा। क्या वजह रही और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें बच्चे ने अपनी मौत का जिम्मेदार स्कूल के तैनात शिक्षकों को ठहराया है। अब इस पर जो है वो कार्रवाई होगी और जांच होगी कि ऐसा क्यों किया गया। थाना प्रभारी ने बताया है कि बच्चे की पैंट की जेब से मिले सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर उसकी लिखाई और बच्चे की कॉपी से उसे मैच किया गया और इस घटनाक्रम के बाद शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया है। और दूसरी ओर सुनवाई में अनुपस्थित रहने वालों पर महिला आयोग का जो शिकंजा है वो सख्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजित सुनवाई के दौरान मंगलवार को कुल 40 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें कि 22 मामलों पर सुनवाई की जानी थी। कई मामलों में दूसरा पक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ जिस पर कि आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने अनुपस्थित पक्षों को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और ये भी स्पष्ट किया है यदि अगली तारीख पर भी संबंधित पक्ष आयोग के समक्ष पेश नहीं होता तो उनके खिलाफ पुलिस के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आयोग का कहना है कि महिलाओं और युवतियों को न्याय दिलाने के साथ साथ उन्हें मानसिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना भी उनकी प्राथमिकता है।

और इसके साथ पल्स पोलियो अभियान 28 तारीख को है और प्रतिरक्षण कार्यबल समिति ने तैयार कर ली है की तैयारियों की समीक्षा।

और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने शोध और चिकित्सा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के रेडियो डायग्नोसिस विभाग का पहला एमडी शोध प्रबंध विश्व की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका ब्रिटिश जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। और ये शोध कार्य रेडियो डायग्नोसिस विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर राजेश कन्ना ने किया है। तो इस तरह से पहला एमडी शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होने से एम्स ने रचा है इतिहास।

स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती पर रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह बढ़ानिया ने कई गणमान्य व्यक्तियों के सहित पुष्पांजलि अर्पित की और वीरभद्र सिंह से प्रेरणा लें तथा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं सभी, ये कहना था हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का।

चुलबुला सा ये गीत है, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का एक गीत और भी सुनवाया मैंने आपको इस फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ है।

कल अपना और प्रीत पर आई फिल्म से भी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

खबर आ रही है हमीरपुर से। राज्य चयन आयोग ने शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। साथ ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन शुरू, संस्थानों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। और CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती में फेरबदल तथा टेलीग्राम की भारत में वापसी, अस्थाई प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। चलिए कार्यक्रम में चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: तुम्हारी कसम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम में अपना नंबर बताया था लाइव वाला 7018117091, और ये भी कहा कि आप लोग बात कर सकते हैं हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हैं एक श्रोता, आइए जानते हैं कौन है, क्या कहना चाहते हैं हमसे। हेलो,
1: आप मुझे सुन पा रहे? हेलो,
0: हाँ जी हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं निहारिका बोल रही हूँ धर्मशाला से।
0: निहारिका जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। निहारिका जी, क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था लॉटरी के ऊपर, जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इसको कि हिमाचल में लॉटरी का, जो कि कुछ टाइम पहले बंद हो चुकी थी, हिमाचल में टोटली बैन थी
0: जी,
1: पर जो सरकार है उन्होंने एक फैसला लिया कि लॉटरी हिमाचल में दोबारा आएगी, जो कि पंजाब जा चुकी थी। बट ये जब गई थी तो उससे पहले लोगों को लत थी इसकी काफी हिमाचल में लॉटरी की
0: जी,
1: जो कि इसके जाने के बाद लगभग लगभग खत्म हो गई। पर अब जो ये फैसला लिया गया है वो गलत है, क्योंकि देखो आप 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक का उन्होंने लॉटरी का रेट रखा है
0: जी।
1: बट जो युवा है वो सोचता है कि मैं बहुत जल्दी किसी मुकाम पर पहुंच जाऊं, शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है
0: जी।
1: तो वो शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसको ये नहीं पता है, उसको ये पता है कि 2 रुपए मेरे लिए बहुत कम चीज है, तो ये नहीं पता वो 2-2 रुपए से 5 रुपए पर पहुंचेगा, 10 रुपए पहुंचेगा, 50 रुपए पहुंचेगा, 500 रुपए पहुंचेगा। और अगर वो हारता ही रहेगा, कभी निकल गई तो कोई बात नहीं, पर अगर हारता रहेगा ठीक है, तो वो तो बर्बाद होगा, साथ में उसके घर वाले भी होंगे
0: जी।
1: तो इससे बेटर है कि लॉटरी जो बंद थी उसको बंद ही रहने देते, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को तो मुनाफा है इससे।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बात है, गवर्नमेंट को तो राजस्व मिलेगा ना।
1: हाँ गवर्नमेंट को तो मिलेगा, पर ये नहीं देखा जा रहा कि जो हमारे हिमाचल में पहले ही नशे की लत बहुत है
0: जी,
1: लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं। हर रोज न्यूज आती है, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये पकड़ा गया नशा, इसने इससे मर गया, जान ले ली ठीक है, आज इतना नशा पकड़ा गया, आज इतना ही
0: जी।
1: लॉटरी को एक और प्रमोट कर दिया गया, क्यों? एक तरफ हम कह रहे हैं नशा हटाओ, एक तरफ हम लॉटरी को प्रमोट भी कर रहे हैं, क्यों
0: जी?
1: गलत है ना, इससे अच्छा कोई एजुकेशनल चीज लाते, उसके ऊपर कोई गेम ले आते, बहुत सारी हैं।
0: क्या कैसा क्या हो सकता था आपके हिसाब से?
1: देखिए बहुत कुछ है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी है लॉटरी सिस्टम से
0: जी।
1: लगाते कोई गेम के इवेंट्स चलाते, लोग पार्टिसिपेट करते, उस पे इनाम रखते,
0: मतलब उसमें लोग पैसा नहीं खर्चते ना,
1: उस पे पैसा नहीं खर्चते, गवर्नमेंट देती जो जीतता,
0: लेकिन वो फिर ना? फिर उसको गवर्नमेंट को खुद देना पड़ेगा ना, यहाँ तो आ रहा है
1: तो कोई बात नहीं, उसमें एक एंट्री फीस रख देते, फिजिकल एक्टिविटी तो होती,
0: हाँ
1: बच्चों की एंटरटेनमेंट होता बच्चों का। पर ये तो सीधे सीधे बोल दिया गया ना कि हाँ आओ हमसे लॉटरी लो, और अगर बर्बाद होते तो हो जाओ, हमारा कुछ नहीं जाता है, पर गवर्नमेंट की तो जेब भर रही है
0: जी। जी आपके विचार बहुत अच्छे हैं और ये सभी पूरी जनता के सामने चले गए हैं। और आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से लाइव भी हैं, तो आपको देश विदेश में भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपके विचारों से अवगत हो रहे हैं। धन्यवाद आपका रेडियो गुंजन धर्मशाला से बातचीत करने के लिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर ये प्रशासनिक अधिकारी तक ये बात पहुंचती है तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा
1: जी। धन्यवाद,
0: थैंक यू। श्रोताओं, सुना आपने कि आम पब्लिक का क्या मानना है इस लॉटरी के बारे में। एक खबर हमने आपको बताई अभी जस्ट इसी कार्यक्रम में, और उसको सुनते ही देखिए कैसे फोन घूमा। अपने परिवार को बर्बाद होते हुए कोई नहीं देखना चाहता है, चाहे वो बात नशे की हो या फिर इस लॉटरी सिस्टम की। आपको पता है, हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे घर के पास ही में एक शॉप थी, दुकान थी। अब ये ज़रूर है कि जब लॉटरी सिस्टम बंद हुआ तो उस वो दुकान वाला भी थोड़ा बहुत तो रोया पीटा होगा कि भाई अब मेरा काम कैसे चलेगा। लेकिन सब काम चलते हैं, हर कुछ चलता है। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में किसी के बिना कोई काम न चले या किसी और काम के बिना कोई काम न चले। एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला 10 रास्ते आपके लिए खोल देता है, बशर्त यह है कि आपको परिवर्तन के साथ बदलना आना चाहिए। और हम तो कितने सालों से बदले हुए ही थे, हम खुश भी थे। हमारे यहाँ पे लॉटरी नहीं थी, हम सुनते थे बाहरी राज्यों में लॉटरी निकली, उसका इतना इनाम निकला। लेकिन यही सुन सुन करके कभी कभी मन में ऐसा, किसी किसी के मन में आता होगा कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। तो देखिए, उनके मन की मुराद तो पूरी हो गई, लेकिन उनके घर वालों से पूछिए कि सच में क्या ये सही हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कार्यक्रम में फ़ोन नहीं कर पाए हैं तो अपनी बात हम तक रख नहीं सकते हैं। ज़रूर रखिएगा आप इस, ये जो फेसबुक पेज है जहाँ पर हम लाइव हैं इस वक्त, वहाँ पर भी बाद में भी कमेंट्स कर सकते हैं इस विषय पर। और साथ ही इस नंबर पर ही हमें मैसेज भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 7018117091। मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, बताइएगा कहाँ से आप बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका वो जो मैसेज है वो हम अपने अगले कार्यक्रम में पढ़ें आपके नाम के साथ।

चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको, हो सकता है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत हो, और इसी गीत के साथ अब ज्योति पठानिया को भी दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे किसी और दिन फिर इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

चलो देखो, मैं तो बहुत जल्द ही वापस आ गई करने आपसे बात, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, कि कूटनीति में जो महिलाओं की भागीदारी है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और परियों की कहानियां भी हमने बचपन में बहुत सुनी हैं, तो आज परी अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस भी है। कार्यक्रम में समय नहीं मिला बात करने का, लेकिन जल्द ही मैं किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में इन पर भी बात जरूर करूंगी आपके साथ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिल? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
13: ले जाए पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

0: रंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी के अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है फिर से कार्यक्रम का एक और एपिसोड लेकर। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मैम आपका इस एक और प्यारी सी जानकारी के साथ और प्यारी सी बातचीत के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका।
0: जी तो मैम कैसे हैं आप? बहुत समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है।
1: जी हम अच्छे हैं।
0: जी और लाइफ में किस तरह से, कहते हैं ना जब, मुझे लगता है आप घूमने गए थे कहीं या फिर काम में बिजी थे, किस कुछ ऐसा चल रहा था?
1: काम में बिजी थे।
0: जी तो काम में हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं ना।
1: जी
0: अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका?
1: हमारा तो अच्छा ही रहता है।
0: मतलब डिफरेंट लोगों के साथ, मतलब डिफरेंट आपको स्ट्रगल करना पड़ता है या किस तरह से?
1: कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, डिपेंड करता है कि केस कैसा है। और क्योंकि इट्स लाइक जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम क्लाइंट की नहीं होती, वो प्रॉब्लम आपकी भी बन जाती है।
0: जी बिल्कुल। अब दोस्त हमारे ये सोच रहे होंगे कि केस की बात क्यों की जा रही है। तो दोस्त आप सभी को बता दें, आप सभी जानते हैं मैम मनोवैज्ञानिक हैं और ये काउंसलिंग सेशंस जो है लेते हैं बच्चों के, बड़ों के, सभी के, जो भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, समझ नहीं पाते कि आखिर क्या किया जाए, इस मोड़ पे हम पहुंच जाते हैं। और मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आप डिफरेंट लोगों के साथ डील करते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि आज की हमारी ये बातचीत उसी से संबंधित होने वाली है। तो इसलिए ये छोटा सा हिंट था हमारे दोस्तों के लिए। खैर इस पे हम जरूर आएंगे, पर मुझे लगता है कि शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ हो जानी चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी तो आइए दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिंदगी में लोग बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, लाइफ को फेस करने का तरीका अलग होता है, नजरिया अलग होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें सामने आती हैं और आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी खास बातचीत इससे जुड़ी रहने वाली है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: तो दोस्तों इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो आइए आज के इस कार्यक्रम को और भी खास बनाते हैं, अपनी बातचीत को और भी खास बनाते हैं, क्योंकि जानकारियां हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो मैम मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग व्यवहार हमें फेस करने पड़ते हैं, हर किसी की सोच हमारे जैसे नहीं हो सकती, नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता है। तो क्यों ना आज अपने दोस्तों के साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की जाए।
1: हाँ बिल्कुल रुचिका, हमें लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जिस व्यक्ति को ये है उसे खुद इंसाइट नहीं होती कि मेरे साथ कोई दिक्कत भी है या मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता भी है, जिसके कारण से वो इंसान तो जीवन को खुशी से जीता रहता है, उसे उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो सफर करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि जितना लोगों को जानकारी होगी इस चीज के बारे में, लोग अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वातावरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कई बार बहुत बहुत गहरा प्रभाव छोड़ के जाता है।
0: बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य हमारा एक छोटी सी छोटी बात को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट कर जाता है ना कि हम उतना सोच भी नहीं पाते। तो मैम ने बात की कि अक्सर जब हम अपने बारे में सोच नहीं पाते, और असल में हम देखते हैं मैम कि औरों के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है और खुद की बात करें तो हमें चीजों का पता नहीं होता है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, असल में इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे पहचान सकते हैं।
1: देखिए पहली चीज तो डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर, उसमें तीन चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं। पहला कि कोई भी थॉट इमोशन बिहेवियर है या एटीट्यूड है, वो हमारे जिसकी हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ओवरथिंकिंग है, तो उसकी एक पर्टिकुलर ही थॉट बार बार आ रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, इंटेंसिटी या तो बहुत ज्यादा है या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, और ड्यूरेशन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है या उतनी है नहीं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को डिसऑर्डर करार करने के लिए। उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि ये ऐसी परेशानी है जो उसमें स्ट्रेस आ रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण से आपकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। याद रखें कि और है एंड नहीं, यानी कि तीनों में से अगर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट हो रहा है तो वो चिंता की बात है, यानी कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचें और अपनी समस्या के बारे में उनसे बात करें। अब आते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, तो पहले समझते हैं रुचिका कि पर्सनैलिटी ओवरऑल होती क्या है।
0: बिल्कुल,
1: डिसऑर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर हम बाद में आते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए पर्सनैलिटी जो एक टर्म है, इसका मतलब होता है मास्क, जो पर्सोना से निकला है। तो पर्सोना जो कि एक मास्क है, ये मास्क किसके लिए है? अपने आसपास के लोगों के लिए। जब हम कमरे में अकेले होते हैं तो हमें किसी मास्क की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी के साथ होते हैं, किसी के सामने होते हैं, तो हमें उस मास्क की जरूरत होती है। यानी कि ये मास्क धीरे धीरे डेवलप होता है, जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, जिस प्रकार के हमारे आसपास के वातावरण में हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके आधार पर हमारा ये मास्क डेवलप होता चला जाता है, और एक समय के बाद 6-7 साल की उम्र तक वो मास्क

0: अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं पाते, जहां पर वो बदलना चाहते नहीं, जहां उन्हें इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता
1: जरूरत है। बिल्कुल।
0: देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में बदलाव तब लाना चाहेगा जब उसे खुद उस चीज से दिक्कत हो रही होगी। दैट्स द थिंग कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन इंडिविजुअल्स को होता है, उन इंडिविजुअल्स को खुद की पर्सनैलिटी से कोई तकलीफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिप्रेशन है तो हमारे जो थॉट्स हैं उससे हमें तकलीफ होगी, हमें दिक्कत होगी। अगर हमें एंजाइटी है तो हमें उस जो एक मेंटल स्टेट है हमें उससे दिक्कत होगी। हेंस आई वुड ट्राई कि हम अपने आप में कुछ बदलाव लाएं और हम इस सफरिंग से बाहर
1: निकल सकें।
0: बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ ये भाव ही नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक चीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ही है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म तक सेम रहते, वो बदलते नहीं, चेंज पॉसिबल नहीं है, उनमें इंसाइट नहीं है। वो एक ही प्रकार के थॉट, इमोशन या बिहेवियर के पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं बार बार, सालों साल तक। ऐसा मत सोचिएगा कि जब जब जब एग्जाम आता है तब तब बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है तो ये उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हिस्सा है। नहीं, ये आम बात है, ये अलग बात है। यहाँ पर स्ट्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जाम के होने की वजह से स्ट्रेस है, इसलिए उसको बुखार होता है या इसलिए उसको लूज मोशन हो रहे हैं। परंतु पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब बात करी जा रही है तो ये बहुत ही आम जीवन में जिस प्रकार के लोगों के व्यवहार होते हैं उनमें देखे जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, वो आए और वो बोले कि अरे आप ये पर्टिकुलर काम जो है अपने बेटी से करा लीजिए, और वो उस बात पर उखड़ जाए जहां कि उस बात पर उखड़ने की आवश्यकता थी नहीं। ऐसा व्यवहार उनका पहले था, आज है और हमेशा
1: हमेशा रहेगा।
0: सिर्फ उखड़ना ही काफी नहीं है, ये हम अगेन सबको बता दें, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर होता है उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसके मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके प्रति एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यानी कि एक ही पर्टिकुलर साइन देखकर आप ये अज्यूम ना कर लें कि उनको डिसऑर्डर है। किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में अब बात करना शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है ये जागरूकता और ये अवेयरनेस और एक प्रकार की जिम्मेदारी होना सभी दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको समझें, लेकिन आप लोगों को जज ना करें, आप लोगों को समझने का प्रयास करें। उल्टा
1: बिल्कुल सही कहा है, इस बात को भी मैं भी ये कहना चाहूँ, क्योंकि अक्सर हम क्या कहते हैं, करते हैं असल में जिंदगी में, हम दूसरों को जज करना पहले शुरू कर देते। कोई अगर बड़ी हिम्मत जुटा के अगर कोई काम करना भी चाह रहा है तो फिर उसकी हिम्मत वहीं ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उसे पहले डर हो जाता है कि लोग मुझे जज करेंगे, तो वो कोई भी काम शायद अच्छे से कर भी नहीं पाते और वो अपने बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं कि मैं कुछ भी करूं जज तो लोगों ने मुझे करना ही है। तो लोगों को समझना और सबसे बड़ी बात की सुनना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर चाहे अपने मन की बात हो, उसे भी तो सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपने मन की बातों को मन में आ तो जाते हैं लेकिन फिर वही डर कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इसको जुबान पर लेकर भी आ गया, जैसे अगर मान लो कि अगर कोई लेक्चर चल रहा है, कोई मतलब कि जागरूकता की बात ही चल रही है, कोई स्कूल में कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हमें वहां भी वो एक तरह से जजमेंट वाली चीज जो है सताती है कि अगर मैं इस तरह से सबके सामने स्टेज पे जाऊंगा, फर्स्ट टाइम है या जैसे भी है, तो वो अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ये डांस कर रहा है, ये पढ़ाई छोड़कर डांस कर रहा है, ये पढ़ाई छोड़कर इस, मतलब होता है ना, अपनी अपने नजरिए से अपने अपने तरीके से लोगों की जो परसेप्शन होती है एक तरह से वो बनती जाती है, और कहीं ना कहीं उसी तरह से फिर हम लोग अपने आप को दबा देते, अपने आप को शायद आगे नहीं बढ़ा पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो इसके लिए हमें जरूरी है अपने मन को समझना, क्योंकि मन चंचल होता है, मन बहकता भी है, मन हमें बहुत सारी, क्योंकि हमारे सामने बहुत से ऐसी चीजें होती है, सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन हम खुद को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। खैर, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, और हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। मैम की अलग है, मेरी अलग है, आप लोगों की अलग है, तो और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो ये प्रयास ही है जो हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रयास करने से ही तो जिंदगी सफल होती है, आसान होती है। तो यही प्रयास हम भी कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को हर दिन जागरूक कर सके, अवेयर कर सके और सतर्क कर सके। आजकल बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी न्यूज हमारे सामने आ रही है ना कि एक तरह से शॉक लग रहा है, सुनने में भी डर लग रहा है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है जिन पे हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं, है ना। जिंदगी से एक तरह से हमें दूर करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। तो किसी पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने मन पे विश्वास कीजिए। फिलहाल आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये बातें तो आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को सतर्क नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुक पाएंगे। तो अपने साथ साथ अपने सामने जो गलत हो रहा है उसके लिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम दूसरों के साथ गलत होता हुआ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि ये हमारे घर की बात नहीं है और अगर हम इस चक्कर में पड़ गए तो बात बहुत खिंच जाएगी।
1: अरे अपने घर की बात, अपने घर की बात के लिए भी लोग आवाज नहीं उठा पाते
0: हैं। बिल्कुल सही बात है, आजकल ऐसा समय भी आ गया है। खैर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं मैम, तो क्यों ना अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम एक ही वे में लेते हैं या इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये किस तरह से जो है काम करता है।
1: देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स टोटल 10 होते हैं और हर एक डिसऑर्डर का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है, अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो 10 डिसऑर्डर्स हैं इनको प्रोफेशनल्स ने 3 डिफरेंट क्लस्टर्स में बांटा हुआ है। क्लस्टर ए जिसमें 3 डिसऑर्डर्स हैं, क्लस्टर बी जिसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं एंड क्लस्टर सी जिसमें अगेन 3 डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार से हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को समझते हैं।
0: मैम तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको क्लस्टर्स में डिवाइड क्यों किया गया है और जो आपने 3 क्लस्टर्स बताए तो इनमें एक एक करके बताइए कि एक एक में क्या क्या किस तरह से ये काम करता है।
1: बिल्कुल, देखिए जब इनको समझा गया और इनको एक डिसऑर्डर का नाम दिया गया तब ये देखा गया कि एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर के थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स ओवरलैप हो जाते हैं इन एन इंडिविजुअल। ये इस प्रकार से है जैसे सर्दी हुई तो साथ में बुखार भी आ गया।
0: बिल्कुल,
1: तो यानी कि अगर एक डिजीज है तो उसके साथ दूसरी डिजीज के सिम्टम्स थोड़े आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं या 2 डिसऑर्डर्स एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसा अधिकांश समय पर देखा गया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ तो ऐसा डेफिनेटली होता है क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए उसने किस प्रकार का पर्सनैलिटी को कैप्चर कर रखा है, कैसे वो इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए

0: वह समझ सकता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है शायद ये नहीं पता, पर कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ। इसमें क्लस्टर ए में हमारे तीन बेसिकली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो है हमारा पहला पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पैरानोया स्किजोफ्रेनिया एक अनदर डिसऑर्डर है। तो स्किजोफ्रेनिया में जब पैरानोया होता है वो अलग है, पर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी में उसको शक रहेगा ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि वो शक कभी हमेशा के लिए चला जाएगा, नहीं, वो शक परसिस्ट करता रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी किसी व्यक्ति के ऊपर शक जाएगा, कभी किसी व्यक्ति पे शक जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि कोई मुझे मारना चाह रहा है या कोई मेरे बारे में खराब बातें सोच रहा है, कोई मेरे बारे में खराब बातें कह रहा है, वो मेरी कहते ना मेरी चुगली करता होगा या वो लोग मुझ पर हंसते होंगे, उन्हें इस प्रकार के थॉट सताते रहते हैं और वो इसी प्रकार के बिलीफ के साथ जीते। तो इसलिए उनके साथ तो वो उनके लिए दोस्ती करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आता है स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोनों में ही ऐसे देखा जाता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर एक व्यक्ति को बहुत स्पेस चाहिए होता है, जैसे स्किज़ोइड है उनको बहुत स्पेस चाहिए होता है, दे डू नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद। अगर गलती से ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो कभी भी अपने वाइफ के साथ या अगर गर्ल को है तो हस्बैंड के साथ वो अपना रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाते, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। उनके पार्टनर हजारों कोशिशें करते रह जाएंगे टू डेवलप अ गुड रिलेशन, बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिसऑर्डर है ना, तो उनको नहीं लगेगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि बस मैं नहीं चाहता एंड दैट इज इनफ। उनके पास रीजंस नहीं होंगे, उनके पास बताने के लिए एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, उनके पास वो सोशल जो एक डेवलपमेंट होता है रिलेशन में वो नहीं होगा, उनके दोस्त भी नहीं होंगे, उनको लगेगा कि मैं लोगों से अलग हूँ। और एक है स्किज़ोटिपल जिसमें लगेगा कि ये दुनिया ही अजीब है, ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है, उनको लगेगा मैं यहाँ फिट नहीं होता, वो भी अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो तीन डिसऑर्डर्स हैं इन तीनों में कॉमन क्या देखा जा रहा है कि ये ऐसा जो व्यक्ति होगा उनको सोशल रिलेशंस डेवलप करने में चैलेंजेस आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इनकी थोड़ी अपनी दुनिया होती है,
1: अपने में रहना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल। अब आगे हम लोग बढ़े उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले ले रुचिका
1: जी। बिल्कुल मैम, कहते हैं ना कि बातों के साथ साथ थोड़ा सा, और बातें बहुत गंभीर चल रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं तो दोस्तों गंभीर तो होंगी ही, और अक्सर हम खुद में रहना पसंद करते भी हैं, आप ये सभी जानते हैं। थोड़ा सा और जानकर देखिए कि सच में आपके साथ भी ऐसा होता है, रिलेशन डेवलप करने में मुश्किलें आती है या नहीं आती है, जो बातें हमने की कहीं आपके साथ ऐसा हो तो नहीं रहा, ये डिसऑर्डर कहीं आपको खुद में देखने को तो नहीं मिल रहा, क्योंकि अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो जब हमें जानकारी मिलती है उस चीज से जुड़ी तो हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं।
0: इसमें बस हम एक बात ऐड करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे कुछ चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे होते हैं तो उनको या ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं तो वो जो है उनके लिए रिलेशंस बिल्ड करना उस दौरान डिफिकल्ट हो जाता है, या अगर कोई ब्रेकअप फेज से गुजर रहा है या अगर देयर फ्रेंड्स हैव घोस्टेड देम और तब उन्हें डिफिकल्टी हो रही है। इन सिचुएशंस में आपको ये डिसऑर्डर नहीं हो तो अपने ऊपर लोड भी नहीं लेना है। ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम एग्जांपल्स के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कमरे से बाहर आना पसंद ही नहीं करता है, जो हफ्ते तो हफ्ते में शायद एक बार बाहर आता हो। और जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हैं कहीं से कनेक्ट कर पा रहे तो जरूरी नहीं कि यही वाला डिसऑर्डर हो। तो अगेन आप बस इतना समझिए, अगर ये कोई भी साइन या सिम्टम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप एक बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करिए, कंसल्ट करिए, क्योंकि सही डायग्नोसिस तो वही देंगे। अपने ऊपर किसी भी तरह के टर्म को लेबलाइज नहीं करना है, ये समझना है कि हम अवेयरनेस के साथ
1: आगे बढ़ेंगे,
0: सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे।
1: मैम के कहने का मतलब एक ही है कि खुद डॉक्टर नहीं बन जाना है। जिस चीज के लिए जो जो हमारे लिए सुविधाएं हैं उनके पास जाइए और उस सुविधा का लाभ उठाइए, तो ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले तो वो भी हमारे लिए परेशानी बन जाती है। खैर, तो इस परेशानी को दूर करते हैं, यानी कि इस गंभीर बात से थोड़ा सा आपको मनोरंजन की ओर लेकर चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये एक खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में और बहुत ही खास जानकारी के साथ। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। पर्सनालिटी तो हर किसी ने सुना है, हर कोई अपनी पर्सनालिटी को हाई लेवल पे रखना चाहता है, दिखावे के चलते ही सही, लेकिन कौन चाहता है कि हम किसी से कम दिखें? तो जरूर दिखिए, लेकिन साथ ही डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो मैम हम बात कर रहे थे, मैम ने अभी बात की कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कितनी कैटेगरीज में जो है उसे डिवाइड किया गया है। तो क्लस्टर ए की हमने बात की जिसमें कि शक की ज्यादा हमारे में गुंजाइश रहती है या फिर हमें खुद के साथ ज्यादा रहने की आदत होती है, एक कमरे में बंद रहने की आदत होती है। तो क्लस्टर बी की ओर बढ़ते हैं आगे और उसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्लस्टर बी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को किस तरह से लिया गया है, किस तरह से उसे हमारे लिए पहचान बनाई गई है। तो मैम जरूर हमारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।
1: देखिए क्लस्टर बी जो है डिसऑर्डर, वो बेसिकली कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को सोसाइटी में ढलने में घुलने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, यानी कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस हमेशा खराब रहेंगे। वो रिलेशंस बनाना तो चाहेंगे लेकिन एक प्रकार की स्टेबिलिटी उनमें नहीं आ पाएगी। अब क्लस्टर बी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं चार। पहला है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे व्यक्ति के अंदर मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं और डायग्नोसिस के समय पे ऐसा लगता है कि इनको तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन तब भी कोई फुल वो तो ना कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, तब उन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। इनकी जो पर्सनैलिटी, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे
0: जी।
1: ये ऐसे लोग हैं जिन्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, इनको लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे इसका बहुत डर रहता है, इनके अंदर सेल्फ डाउट रहता है, इनके अंदर ये मल्टीपल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, या फिर इनके अंदर ऐसा भी होता है कि लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम बहुत रहेगी, इनको ये रहेगा कि कोई शायद हमें पसंद नहीं करता है, इन ये चाहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो वो ड्यूअलिटी रहेगी और सुसाइडल थॉट्स या फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर, ये चीजें भी देखी जाती हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको लाइक अटेंशन को ग्रैब करने के लिए वो कुछ अटपटी चीजें करते रहेंगे, जैसे कि अटपटी शब्दों का प्रयोग करना, अपने इमोशंस या भावनाओं को प्रकट करने के लिए वो कुछ एक्सट्रीम टाइप के वर्ड्स का यूज करेंगे, वो एक्सट्रीम टाइप से अपने आप को कैरी करेंगे, उनका जो पहनावा होगा, जो मेकअप होगा वो बहुत लाउड होगा, यहाँ तक कि इनके भी मल्टीपल रिलेशंस होंगे, इनको भी प्यार की कमी रहेगी, इनको लगेगा हमें बस प्यार चाहिए और उस प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, पर वही बात है कि इनका रिलेशंस अच्छे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे बोलते हैं इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है इसमें जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, सुपीरियोरिटी की, मतलब मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, इनको ये ख्याल रहता है कि मैं जो हूँ मैं सब कुछ हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं या तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है या तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ या मेरे इशारों पर दुनिया चलनी चाहिए। अगर आप इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेंगे तो इनको इंसल्ट फील हो जाता है, इनको इनके अंदर एट द कोर तो एक्चुअल में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत इनसिक्योर होते हैं ये, पर क्योंकि पर्सनैलिटी है जो मास्क है वो कैसा है, वो रहेगा बहुत हाईली कॉन्फिडेंट शो करेंगे वो, इनके अंदर ऐसा अलग सा करिश्मा रहेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पर यही लोग जो अपने पर्सनल रिलेशंस के साथ होंगे, वाइफ हस्बैंड के साथ या फिर बच्चों के सामने, तो वो बहुत ही अलग तरह की पर्सनैलिटी होंगे, तो सोशल लेवल पर तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि इनसे अच्छा व्यक्ति तो कोई नहीं है, ये तो बड़े विनम्र हैं, सॉफ्ट हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, पर असली सच्चाई सिर्फ उनके घर वालों को पता होगी क्योंकि वो वहां पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों को पावर चाहिए होती है, ऐसे लोग जो हाई स्टेटस ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स या पीपल होते हैं उनके साथ कनेक्शंस बिल्डअप करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं, झूठ बोलते हैं और गैस लाइट करते हैं, यानी अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे,
0: नहीं मानेंगे।
1: और आपको बोलेंगे कि आपने ही गलत किया है, और आप में ऐसा डाउट क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा हो सकता है मैंने ही गलत किया हूँ। तो ऐसा होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। चौथा डिसऑर्डर जो है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पहले साइकोपैथ बोला जाता था, जिन इंडिविजुअल्स को ये होता था उनको साइकोपैथ या सोशियोपैथ बोला जाता था। आपने देखा होगा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को जिनको लॉ ब्रेक करने में बहुत मजा आता है, उनके लिए रूल्स नाम की कोई चीज नहीं और ऐसा आप उनके अंदर बचपन से ही देखना शुरू कर देंगे। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा में इस प्रकार के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसके लिए अलग प्रकार का डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर बोला जाता है, कि जहाँ पर बच्चा बड़ों की बात नहीं सुनता टू एन एक्सटेंट कि वो बड़ों को हार्म कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, वो आपको गालियां भी दे रहा है और वो रूल्स भी ब्रेक कर रहा है, वो बेसिकली आपके हाथ के एकदम बाहर जा चुका है, जहाँ पर अब आपको पता ही इसने तो क्राइम वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। यानी अगर बच्चे के लेवल पर कंडक्ट डिसऑर्डर का अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, तब बड़े होकर उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेफिनेटली डेवलप होना है, जो कि सोसाइटी के लिए भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अब आप देखेंगे जुवेनाइल केसेस में जितने भी बच्चे होते हैं वो अधिकांश लोग कंडक्ट डिसऑर्डर के शिकार है, और जो क्राइम करके बैठे हुए हैं लोग एडल्ट्स, उनको अधिकांश लोगों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो जो सीरियल किलर्स भी निकल रहे हैं वो कौन है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। अब ये सिर्फ वो ही नहीं होते जो क्राइम ही कर रहे हैं, ये अदरवाइज भी लोग होते हैं, जैसे कि ड्रग्स का कंजम्पशन करना। ड्रग्स का कंजम्पशन करना पता है सबको कि ये इलीगल है,
0: बिल्कुल
1: इलीगल एक्टिविटी है। प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होना पता है कि ये इलीगल है, बट येट दे विल बी इन्वॉल्व। और अगर आप इन्हें बताने का प्रयास करेंगे तो वो आप बोलेंगे चुप बैठो, वो नहीं सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एक आजादी महसूस होती है, वो अपनी अपनी चलाएंगे। और ऐसे लोगों में एक सेंस ऑफ डोमिनेंस भी होगा, इनको फियर नहीं होगा, इन्हें लॉ का कोई फियर नहीं होता। तो बेसिकली ये जो क्लस्टर बी वाले हैं, आई थिंक कुछ चीजों को छोड़कर बाकी अगर देखा जाए तो सभी में एक प्रकार का, या तो इनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन तो इनको मिल ही रहा है कहीं ना कहीं लेवल से, जो व्यक्ति क्राइम ब्रेक कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है, या जो व्यक्ति लाउड कपड़े पहन रहा है, एक बहुत ही ड्रामेटिक वे में, लाइक लाउड वे में अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करके एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर एक व्यक्ति अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, हर वे में कहीं ना कहीं से उनको अटेंशन तो कहीं ना कहीं मिल रही है। तो यानी कि देर इज समथिंग, जो इनके बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा जहां पे इन्हें अटेंशन नहीं मिली होगी, और अटेंशन पाने के लिए, और अटेंशन यहाँ पे बुरी चीज नहीं होती है क्योंकि अटेंशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लव एंड केयर। तो अगर एक बच्चे को प्यार और केयर मिली ही ना हो तो ऐसे में बच्चा और क्या कर सकता है? तो अनोइंगली अनकॉन्शियसली उनका माइंड ऐसा पर्सनैलिटी मेकअप कर देता है। पर अगेन इन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये दोनों डिसऑर्डर्स सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
0: बिल्कुल। तो अब ये जो बातें सुनी है ना, दोस्तों ने भी सुनी और मैंने भी सुनी, तो दोस्तों आपको भी यही लग रहा हो कि हमारे आसपास तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हम उन्हें भी इस डिसऑर्डर से मतलब कि गुजरता हुआ बोल सकते हैं या फिर क्या?
1: देखिए कुछ ना कुछ साइंस तो होंगे ही, बेसिकली उन सबको जरूरत है कि वो अपने ऊपर काम करें। डिसऑर्डर है या नहीं वो एक अलग बात है, वो तो प्रोफेशनल्स के लिए है ना। आप उन्हें डिसऑर्डर के एस्पेक्ट से ना देखें, आप ये देखें कि उनमें ऐसा कुछ ना कुछ घटित हुआ है उनके जीवन में जिसकी वजह से आज वो इस परिस्थिति में है। यानी कि उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, यानी कि उन्हें मदद चाहिए। उनके ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, थॉट्स पैटर्न या इमोशनल पैटर्न्स हैं, ये एक प्रकार का उनका माइंड का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो चीख चीख के बोल रहा होता है कि सेव मी, सेव द इनर चाइल्ड। तो अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं, सो आई रिकमेंड दैट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, लाइफ कैन बी बेटर, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और आप जब ये काम करेंगे तब आपको अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं। तो अपने आप को ओपन करें टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ, टुवर्ड्स अ बेटर यू।
0: बिल्कुल सही कहा है मैम ने दोस्तों, क्योंकि बात घूम फिर के एक ही आ रही है कि अपने आप पे काम करना कितना जरूरी है। तो ये तो आप सभी समझ चुके हैं कि अक्सर हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या तो जैसे मैम ने बात की अटेंशन और लव केयर जो है हमें चाहिए होती है, खास करके बच्चों की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी इनसिक्योर फील करते हैं तो वो फिर उस अटेंशन को पाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, वो फिर तभी तो क्राइम का रूप ले लेते हैं और गलत गलत रास्तों की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें एक तरह से डर किसी भी चीज का रहता ही नहीं, जब वो इन चीजों से गुजरते हैं ना तो उन्हें वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि उन्हें आदत बन चुकी होती है एक तरह से। उन्हें पता है कि कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। या तो उन्हें पता है कि हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पीछे खड़े हैं सभी, वो कुछ होने ही नहीं देंगे। तो वो निडर, फिर वो जो मैम ने पहले कहा था कि लॉज को ब्रेक करना, मानना ही नहीं कि कोई लॉज भी है हमारे लिए,
1: फाइट्स पिक करना,
0: बिल्कुल जी,
1: मार पिटाई
0: जी। तो यही सब बातें हैं क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं हम अपने आसपास जो माहौल देखते हैं, जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसी से शुरुआत होती है। तो दोस्तों अब जो है हमने क्लस्टर ए की बात की, क्लस्टर बी की बात की, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ये आप सभी जान चुके हैं। तो क्लस्टर सी जो पेंडिंग रह गया है तो उसको मुझे लगता है मैम कि अगले हमें एपिसोड में बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम क्लस्टर सी के बारे में आप सभी के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बहुत ही खास बातचीत के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अब दीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को
0: अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। तो दोस्तों अगले हफ्ते इस बात को जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो हमने बातचीत की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में पनप रही होंगी, उठ रही होंगी, बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे होंगे, जैसे मेरे मन में भी अभी बहुत ज्यादा सवाल कि नहीं, हम तो आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जो मैम ने साइंस एंड सिम्टम्स बताए, तो क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, 9354134057।
0: और अगर आपको लगता है कि फोन पर हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली सेंटर आ सकते हैं और सेंटर में आके अपने सवालों के जवाब, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। हमारे सेंटर का पता रहेगा
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, अपोजिट मांझी पुल, धर्मशाला।
0: जी दोस्तों, तो नंबर भी आप सभी तक पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी आप सभी तक पहुंच चुका है। तो देर किस बात की है, सवालों के साथ फटाफट से फोन उठाइए और कॉल कर दीजिए या तो सेंटर पहुंच जाइए। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड होस्ट रुचिका और
1: प्रियशिका
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात इसी बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपने मन की।

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
7: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पड़ी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
12: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
13: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
14: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
12: तुम क्या खड़ा?
14: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
14: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हुए।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
14: गजब बेइज्जती है।

तो मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने तन की।

दोस्तों आप सभी इंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
14: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तजतों माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहा सारे दई शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो हाँ सारे जो ही इंतजार रहिंदा है कि कालू दिया 2 बजदे न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़दे न। ताशतों इंतजार दी जेड़ा घड़ी थी तो हाँ वास्ते से बेहतर लंबी थी, पर हुण जेड़ा इंतजार दी घड़ी है से बिल्कुल खत्म होंदी है। अगर तुहां अपने अपने रेडियो सेट ऑन नहीं कीते हो तो जल्दी जल्दी रेडियो सेट ऑन करा। कने तो हाँ सारे जी पता है कि 2:02 कार्यक्रम च होइया न, कने सफर तुहां तक रहना है 2 ते 3 बजे तक। तो पहले तो हाँ अपने कार्यक्रम की जेड़ा शुरुआत है से एक प्यारे दे गीत कने करनी है, क्योंकि शुरुआत गीत संगीत कने हो जाती है तो कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से और भी प्यारा लगता है। कने जितने भी श्रोता न से थोड़ा दिया अपना मन भी चेंज करी लेंदे न, कने अच्छा जेड़ा फील है सभी जरूर करते न। चलते न करते न अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत कने।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਤਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਨੇ ਦਿਨੇ ਦੀ ਆਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा अजकना जेड़ा दिन है सभी अहाँ वास्ते खास है कने तुहां अपना जेड़ा अजकना दिन है सभी जरूर खास तरीके ने जेड़ा इसे बना देने 24 जून 2026 दी अहाँ गल करिए बुधवार दी ता ये दिन तुहां वास्ते भी खास है कने हर दिन अहाँ हमेशा ही सोची करी चलती न कि अपनी जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है से किस प्रकार निभाना है या किस प्रकार अपनी जिंदगी च अगे बढ़ना है तशो तो प्रेम कने सम्मान अहाँ दी जिंदगी च कितना ज़्यादा जरूरी है सभी तो सारे जो ही पता है प्रेम अपने च प्रेम कने सम्मान ये जेड़ा चीज़ है से बड़ी मायने जेड़ा से रखती है पर आज कने दौर दी अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ ये जेड़ा प्रेम है या मान सम्मान है से बिल्कुल अहाँ जो कम दिखने जो मिला था चाहे बड़े न चाहे छोटे न हर कोई मोबाइल फ़ोन ची इतने ज़्यादा बिजी हैं कि यहाँ ल अपने वास्ते भी समय नहीं है कने अपने वास्ते भी समय जेड़ा है सह नहीं है कने अहाँ बच्चों की गल करिए या युवा पीढ़ी की गल करिए हर कोई अपना जेड़ा फायदा है से हमेशा दिखता है अगर अगला व्यक्ति जेड़ा से तीस जो अहाँ की मदद है तो तिना जो कोई फर्क नहीं पौंदा तशो तो जिंदगी का जेड़ा सफ़र है से तुहां वास्ते भी खास है कने हर कोई ये सोची करी चलता है कि अहाँ अपने जेड़ा जिंदगी का सफ़र है से किस प्रकार निभान अगर अपने का साथ अहाँ जो मिली आता है तो कुछ ना कुछ ये जिंदगी का जेड़ा सफ़र है से और भी बेहतर बनी आता है सबसे बड़ा धन तो सारे जो ही पता है कि सबसे बड़ा धन अहाँ का क्या वै थोड़ा दिया सोच विचार करके दिखा कि सबसे बड़ा धन क्या वै मान सम्मान प्रेम अपने च प्रेम अहाँ किस प्रकार रखते हैं तशो तो थोड़ा दिया खुद जो भी समय दिया थोड़ा दिया अपने जो भी समय दिया कने इस कार्यक्रम दे सफ़र कने भी तुहां सारे जरूर जेड़े से जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जेड़ा अहाँ दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टैक्स मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते अहाँ दे जेड़ा पहले श्रोता न से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गल बात हेलो हेलो श्रोताओं कॉल जेड़ा से डिसकनेक्टेड हुई हो ता दिखा जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है ना इस बड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव जेड़े चल रहन दे पर अहाँ तिना उतार चढ़ाव दा जेड़ा सामने है से किस प्रकार कर दे न से यहाँ पर निर्भर करता है ता श्रोता फिर ते कॉल पर जुड़ी हो न कर दें तिना कन्ने गल बात हेलो
1: हेलो
2: नमस्कार जी
0: जी तो हाँ अपनी रेडियो सेट दी आवाज कम करी लें जी
2: हाँ जी
0: हेलो
2: हाँ जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी
2: नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
2: जी
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा ना की है जी
2: मेरा नाम सुभाष मचमंडा ते बोला दे महाराज
0: जी सुभाष जी ठीक ठाक है ना क्या काम काल गया तुहां
2: बस थोड़ा जहा गाय गाग बड़े कहना फिर आराम करा दे
0: जी अच्छा आराम करा दे
2: हां जी
0: जी ता आज कना जेड़ा दिन है से तो हुंदा किस प्रकार चल लिया
2: इला ता ठीक ही है जी
0: जी ठीक ही है
2: हां जी
0: मौसम जेड़ा है से चमंडा दा क्या बोला था आज
2: पहले तो वही थोड़ी देर बरखा बूंदा बूंदी करने हूँ जरा मौसम ठीक है
0: जी ता सुभाष जी आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न प्रेम सम्मान दी, तो तुहें क्या लगता है? जी
2: प्रेम प्यार तो जरूरी है जी, प्रेम प्यार दी सारा कुछ ठीक होना चाहिए, सारे कने प्रेम प्यार दी गल होना चाहिए जी।
0: जी जी
2: प्रेम प्यार रखना चाहिए सारे कने, हिली मिली करी प्रेम प्यार होना चाहिए जी।
0: जी
2: हाँ जी
0: जी प्रेम ने हर काम जिहड़ा से जल्दी हो जांदा ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी, पर एक गल ये भी है ना कि अगर अहां हमेशा अच्छा सोचते न या हमेशा अच्छा सोची करी चलते न, कने अगला व्यक्ति है से हमेशा बुरा सोचता है, फिर भी अहां जो अच्छा सोचना चाहिए ना जी।
2: शायद जो मर्जी सोचते जी, आपू तो बुरा नहीं सोचना है
0: जी, अपनी जेड़ा सोच है से हमेशा अच्छी या सकारात्मक रखना चाहिए ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी, पर आज ने दौर दी अहां गल करिए ता क्या तुहों जो लगता ये चीजा दिखने जो मिला दिया या बड़े अंदर या छोटे अंदर से प्यार भावना है कि नहीं है?
2: दरअसल जी प्यार भाव तो बिल्कुल रहा नहीं होना
0: जी, बिल्कुल नहीं है ना।
2: बड़े होने चाहे छोटे होने उतने ना टाइम ही नहीं है, अपने टाइम में अपने चाला चो चले सारे ही।
0: जी जी
2: सब बोलते हाँ तभी सब कुछ सारा ठीक है, झट पट मोबाइल पकड़ा कर देखने बस मोबाइल ही बस हो।
0: जी जी जी
2: प्रेम प्यार नहीं रहा हूँ, पहले से प्रेम प्यार रखना है हूँ तो कोई नहीं गल भी नहीं कर रही थोड़े जिते।
0: जी हूँ तो हाल चाल या गल भी जड़ा से बड़ी कम होंगी ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी, तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके?
2: मैं गाना सुनना सोरिया दा पदरा मैदान।
0: जी सोरिया दा पदरा मैदान,
2: पता नहीं कनेर कनेर आना ही आवाज आएगी कुछ ये समझो नहीं आ गई ये।
0: जी जरूर कोशिश कर दें जी, तो हम फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी।
2: धन्यवाद जी।
0: जी तो हम भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते। ये है तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, दर्शो तो तुम सारे जो ही ले कर चलते न फरमाइश की ओर, पर तो हाँ ये सोचा दी होने न कि ये फरमाइश यहाँ तक कि ना पहुँची हो, सभी जरूर दसते हैं ना ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने, कने तिना दा नाव है सुनील कुमार जी, कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोड़ते।

0: हाँ बोला देना, रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। अगले जेड़ा श्रोता न सब यहाँ कने जरूर रूबरू होना लग्यो तीना कने भी यहाँ गलबात करनी है कने तो हाँ तक तीना दी आवाज़ जेड़े सभी जरूर पहुँचानी है कने से कुतु दे रहने वाले न सभी तो कर दिन तिना करने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक ठाक जी।
0: जी तुहां अपना ना दसा कने कुहा जगह दे रहने वाले न जरूर दसी दिया।
1: मैं प्रकाश चंद बोला जी सुके बागे दे।
0: जी प्रकाश जी सुके बागे दे बोला दे।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी प्रकाश जी रेडियो गुंजन धर्मशाला जी रहे से तुहां माटी दी मह कार्यक्रम रोजाना ही सुनते?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी ता कार्यक्रम जी रहे से तुहां जो कदया लगदा?
1: बड़ा अच्छा लगदा जी।
0: जी अच्छा लगदा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: प्रकाश जी आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से करा देन प्रेम सम्मान दी तो तुहें क्या लगदा प्रेम सम्मान अहां विच होना कितना ज़्यादा जरूरी है?
1: जी
0: ता मतलब प्रेम कने सम्मान जेड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी ज्यादा जरूरी है ना जी। जी ता पर आज कने दौर दी गल करिए ता ये चीजा तो हुन जो दिखने जो मिला दिया। हेलो जी ता तो हां आज कुंडिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करगे जी?
1: इनके बाबे भाई सुनाई दे जी है मोर सवारी आउंदा मेरा पुंगारी मोर सवारी आउंदा ओ।
0: जी मोर सवारी आउंदा मेरा पौना हारी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी। पानी टैंकी आ चर्जा पर है
0: जी
1: ये पानी दी टैंकी ओ भाई रमा। हाँ जी
0: जी जी जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है सर तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद जी तुहाडा
0: जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं ना कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
2: जी महाराज जी।
0: जी क्या हाल चाल है जी?
2: ठीक ठाक है ना?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
2: अच्छा जी मैं घूमना चली गया। हाँ फिर घूमी घूमी कर आया तो हाँ आज फोन कर लिया। फोन तो मैं कल भी लाया करना पर वो दुबे लगे हुए।
0: जी यहाँ भी थोड़ा दिया बिजी हुई थे ना जी।
2: जी महाराज
0: जी जी जी तो कुछ कुछ तो हम जेड़े ऐसे घूमे आए
2: ना जी। सोलन गया था
0: जी, सोलन
2: गया महाराज जित्तू। बड़े सारे बड़े बड़े सोने सोने इलाके ने
0: सोने सोने इलाके ने सारे इलाके जड़न से घूमे आए तो हाँ ना जी।
2: सारे तो नहीं घूमे पर घूमी आए नहीं जरा
0: जी। जितने भी घूमे आए सही हांदी जिंदगी दियां यादा बनी आंदिया ना जी।
2: यादा हां जी हां जी यादा बनी आंदिया जी। घूमे दा पूरा मैं घूमे दा पूरा हिमाचल मैं
0: जी जी
2: दुबारी जाए मैं।
0: जी चलो अच्छी गल है ना जी क्योंकि घूमना फिरना भी यहाँ वास्ते जरूरी है ना जी।
2: अपना मन क्या खुश रहता जी।
0: जी सारी गल मने दी है कने यहाँ जिंदगी दी है ना जी। अगर जिंदगी खुश रखनी है तो कुछ ना कुछ यहाँ जो घूमना फिरना भी जरूरी है अपने कने प्यार भावना रखना भी जरूरी है ना जी।
2: जी महाराज जी प्यार भावना तो जरूर इंसान कन्ने जरूरी और इंसान कन्ने होना होना चाहिए पशु पक्षी कन्ने भी प्यार होना चाहिए।
0: जी पशु पक्षी ने भी प्यार अगर यहाँ रख देना यहाँ अपनी प्रकृति दी गल करिए तो त्यहाँ कन्ने भी यहाँ जो प्यार भावना नहीं रहना चाहिए ना जी।
2: जी महाराज
0: क्योंकि प्रकृति यहाँ जो बड़ा कुछ जड़ा से दिन दी है पर यहाँ किस प्रकार प्रकृति का जड़ा फायदा है से जरूर लें देना पर उस जो नुकसान भी जरूर कर देना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो आज यहाँ जड़ा गल बात करा देना सभी एक करा देना प्रेम सम्मान देना जी।
2: जी महाराज
0: जी जी तो तुम्हें क्या लगता?
2: बोले,
0: जी
2: देखा जी प्रेम ऐसी चीज है ये
0: जी
2: इंसान कुछ भी भारत में कुछ भी मिली पाऊंगा इसके ने
0: जी
2: प्रेम प्यार रखे होंगे दूर दूर से मिलना होंगे
0: जी दूरा ते ही जिड़े से मिलना आई जाता ना जी।
2: दूर मैंने कहा ये बोलते आंधे इलाके का बंदा है
0: जी
2: क्योंकि इसके ने प्रेम प्यार होंगे
0: जी
2: कहने जे प्रेम प्यार नहीं कितने कुछ करना ही नहीं हो तो दूरे दे मुख मौड़ी लंदा रहा इसने क्या गल करनी
0: जी
2: ऐसे ऐसे बंदे भी होंगे पर इंसान जो हमेशा वास्ते खुश रहना चाहिए कर सारे कन्ने प्रेम प्यार करना चाहिए जी
0: जी सारे जो भी खुश रखना चाहिए ना
2: हाँ
0: जी।
2: जी हाँ जी
0: आहंदी जेड़ा चेहरे दी स्माइल है से अगर अगले व्यक्ति जो खुश करिंदी है ना कुथी सभी
2: जी
0: यहाँ अपने जो सौभाग्य मनते ना जी।
2: जी
0: जी जी तो आज तो हाँ कुंदिया अपनी पसंद का गीत जड़े से सुनना
2: मैं जी आज सुनना क्या लंदे तेरी जिंदगी
0: जी। अच्छा भजन सुनना है तो हाँ तेरी जिंदगी फकीरां दी
2: जी महाराज जी
0: जी जरूर ये भजन तो हाँ तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
2: धन्यवाद महाराज जी
0: जी। दर्शो तो कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न चलते न अगली फरमाइश की ओर क्योंकि तो सारे जो भी इंतजार है कि अगली जिड़ा फरमाइश है सियाह तक कलू दिया पुजती है तो इंतजार की जिड़ा घड़ियां ना से तो वास्ते बिल्कुल खत्म हैं। चलते न सुनते न इस प्यारी दिया फरमाइशा जो तो सारे भी इस फरमाइशा जो जरूर इंजॉय करा।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तशु तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गल बात जड़े से जरूर करी सकते तशु तो एक जड़ा जानकारी है सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचानी है कि जड़ा स्वर्गीय श्री कृष्ण कपूर जी की 75वीं जयंती च पावन अवसर पर जड़े से तो हाँ सारे ही निःशुल्क जड़ा चिकित्सा है तिश रक्तदान शिविर जड़े से जरूर लगा था है। ये शिविर जड़े से 25 जून जो लगा था है यानी कि कल जड़ा स्थान है से वह स्वर्गीय श्री कृष्ण कपूर निवास स्थान कने ये जड़ा इसका जड़ा समय है सवे 10 बजे ते ये जड़े से शिविर शुरू हो जाना है तो तुहां जरूर जड़े से रक्तदान शिविर च जाई करी महादान जड़े से जरूर करी सकते अपना जड़ा छोटा दिया जड़ा योगदान है से तुहां सारे ही जरूर जड़े से दे सकते ता जरूर तुहां रक्तदान करा कने महादान जड़े से भी जरूर करा ऐसी कन्ने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते इसी सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने थोड़ा दिया कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है से चेंज कर देना।

है तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि करने तो तुम सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ सकते कने हाँ करने गल बात जड़े से जरूर करी सकते। दर्शो तो तुम सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जल्दी जल्दी जुड़िया कुछ अपनिया जड़ा यादा न तेना जो जरूर ताज़ा कर देन क्योंकि प्रेम सम्मान की अहाँ गल करा देन। इसी कने 24 जून 2026 का दिन बुधवार का दिन कने कुछ गर्मी वाले दिन हैं। वैसे तो मौसम अपना जिहड़ा करवट है से जरूर बदला दा है मौसम के अनुसार चलना भी अहाँ वास्ते जरूरी है कने इसी कने बच्चों की अहाँ गल करिए या युवा पीढ़ी की अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ मौसम के अनुसार जिहड़ा सीजनल अहाँ दे फल हैं सभी अहाँ दे कितने ज़्यादा अहाँ इंजॉय करते थे जिहड़ा छोटिया छोटिया यादा न तिना जो अहाँ जरूर ताज़ा करते न जरूर करना बनता है ना। कई बार ये जिहड़ा यादा न से अहाँ जो हमेशा अहाँ दे चेहरे पर स्माइल जिहड़ा है से जरूर देख रही जानिया न। अंबा दी अहाँ गल कीती करी तो अंबा का जिहड़ा अंबू है या चीच है कच्चे अंबा की जिहड़ा सब्जी है से बनती है कने कुछ ना कुछ अहाँ इन्हां सब्जियां का जिहड़ा स्वाद है सभी जरूर लेंदे न कने पर अजकने दौर की गल करिए तो कुछ ना कुछ बच्चे जिहड़े से इन्हां सब्जियां जो पसंद नहीं करते। प्रकृति की मैं गल पहले भी की थी कने हुण भी करा दी है कि प्रकृति अहाँ वास्ते हमेशा अच्छा सोचती है अहाँ जो कितना कुछ जिहड़ा से प्रकृति दिंदी है पर अहाँ किस प्रकार प्रकृति का जिहड़ा फायदा है से लेंदे न से यहाँ पर निर्भर करता है। दशो तो चलते न थोड़ा दिया फ्री तो अगे बढ़ते न कने तो जो फ्री तो फरमाइश की ओर लेकर ही चलते न सुनते न सब प्यारी दिया फरमाइशा जो तो सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दशोता तो सारे ही सुनिया है गीत ए फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, कने तिना दा नाव है पवना जी, कने से रहने वाले न कांगड़े ते। इसी कने अगे वर्दी न कने अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचाते न, तुह सारे ही इस फरमाइशा जो इंजॉय करा।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना दे थी माटी दी महक इसी करने यहाँ ये गीत ये फरमाइश तो हाँ तक पहुँचा देने फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए फेसबुक के माध्यम में तो हाँ सारे भी ऐसा फरमाइश जो जरूर एंजॉय करा करने अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि तो सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जो

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
12: एकदम पक्का।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, UPI से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज।

0: काहे नहीं सुनते आप हमारी?
1: तुम क्या खड़ा हो?
0: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
2: ले जाए पक्का?
0: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
3: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
4: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
5: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
4: हाँ बोलो।
5: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
4: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
5: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
6: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार छोटो, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को और हमार जे सचिन कपूर तुस हो गए बिल्कुल तुंदे वीडियो सेट में हाजिर हो चुके और बिल्कुल अपने फेसबुक रे माध्यम थों भी अपने फेसबुक लाइव थों के आसो तुस हो गए जुड़ने रहेंदा अभ्यास के आसो डेली रहेंदा रोजाना रहेंदा हाशो तो हम सचिन कपूर आ तुंदा अपना आर जे वीडियो जो कि बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मन जितने भी श्रोता आसू हिरदन त्यारा सभी रहो तहे दिल थों स्वागत करनो, हार्दिक अभिनंदन करनो। हाँ कैसे हैं तो सब, उम्मीद भी करनो कि खरे भुणे तंदुरुस्त भुणे हैं और सेहतमंद भुणे हैं। सो तो सेहतमंद रहना के सो बहुत जरूरी है, हमेशा बोलता हा कि अगर तो है सेहतमंद हैं ता तो सब कुछ कर सकते हैं और अगर तो है सेहतमंद ही नहीं श्रोताओं ता तो है कुछ भी ना कर सकते, कोई भी काम किया असो ना कर सकते हैं, है ना। तो सेहतमंद रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रोताओं। तो ऐसा बस वो कि जुड़ी सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ अदू वो कि शेयर करनो साझा करनो 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते हैं श्रोताओं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं। बट यह गल खास ख्याल रहा कि जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर हुआ, जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक किए श्रोता हूँ सो जरूर वो। तो चलिए चल दें थोड़ा करे और हाँ और सभी पहले तो धर्मशाला का मौसम के सो जाने लेंदे ने इस समय के था। इस समय अगर हम गल करूँ तो श्रोता हूँ 20 डिग्री के आसपास के ऐसा टेम्परेचर है धर्मशाला मंच और नमी की गल करिए श्रोता हूँ जती अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बलते हैं तो 84% हाँ ये इस समय धर्मशाला रहा मौसम और दिन है काफ़ी मतलब काफ़ी इन द सेंस कि थोड़ी भले सकते हैं कि बरखा भोई है दिन भी है ना तो थोड़ा करे ठंडक किया सो पे तो ज़रूर है लेकिन तत्वों बाद फिर किया सो हल्की हल्की धूप किया सो हेरने जो सो मुड़े थे सो तो है ना। तो यह मौसम रहा हाल इस समय धर्मशाला रहा और जो है तुसु तक साझा करो तुसु तक मैं आ करो हाँ और भी बहुत सारी जानकारी जो तुस हो गया सो शेयर करनी और तो है कॉल कर सकते हैं 708-8-8-709 पर कॉल करके अपना पसंदीदा गीत के शो तो सो बिल्कुल तो है हो नहीं सकते हैं। चलिए जी आगाज करते हैं और तत्व बाद फिर मुलाकात करते हैं तुसु सो के अपने सभी प्यारे प्यारे श्रोता सो के।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো এস বি টিউন গুড রোর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা লে করে আউ সচিন কাপুর হাজির বুঝ গো তুমি এস বি রেডিও উস সেট মার্ক মোকে ফিরে শ্রোতাও তা কল জরুর করে সকতে হিন 7018 8899 পর নম্বর আক মোকে ফিরে 7018 8899 পর दाढ़ी शीलो चौंकरी घर री दीवार थोंकिया सो कार बजरे सतो जिला मुख्यालय धर्मशाला वे सोगी लग दे दाढ़ी शीला चौंक में मंगलवार जो कि ऐसो सड़क दुर्घटना रा मामला के ऐसो सामने आ सतो जति मा अक स्कॉर्पियो गड्डी दुर्घटनाग्रस्त की ऐसो भोई आ सतो सड़क तो बाहर निकल कर मनुरे घर री चार दीवारी जो तोड़ने तोड़ी था है स्कॉर्पियो और तड़ी फंसी गई थी सतो गनीमत ये रही कि गड्डी थल्ले की गड्डी थल्ले की नाले में लुड़की ना तो बड़ा हादसा बुने थो कि ऐसा बचेगो तो ठीक है जो वाहन वे वाहन में सवार चालक और सवारी थी सतो तीनों हल्की चोट के सो आइन जिन्हों जोनल अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार रे बाद के ऐसा घर भेजी दिता सतो। चलिए इस प्रकार की जानकारी तुस हो गया है जरूर शेयर करते वे साझा करते रहे तो सब बंडो ने इस समय आर जे सचिन कपूर सो गए कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा जन आप हूँ कर दिन बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच तैया लेकर चल दिन तू सभी जो श्रोतों इस गीत तारी किनारी।

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইস সময় ইন দি আপনি গপ্পগান সো চল রিন তুন দে সবই রে রেডিও সেট মা রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্জ তক মুকে ফির সবই হুনে ওয়ালে রা সবই শ্রোতাগণ রা আউ তে দিল তো স্বাগত করনু হার্দিক অভিনন্দন করনু হা শ্রোতো তা চলি থোড়া করে আগু চলতে হিন ওর इन श्रोतागण असूगी कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थों बल्लू करते हैं और कौन दिन गीत के असो इन श्रोता हूँ ना चाहते नमस्ते जी
1: शैशन कपूर जी नमस्कार
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: और जी ठीक ठाक है ना
0: बढ़िया जी तो है बल्ले तो है ठीक ठाक राजी बाजी
1: बस ठीक है जी लग रहा टाइम कर रहा
0: अच्छा कौन बल्लू कर देन और कड़ी थों बल्लू देन जरा आप
1: हां सचिन को दी दान सारा कचहरी हम बल्लू करना
0: धर्मशाला कचहरी थों बल्लू देन क्या शुभ ना जी तुंदा
1: हां जी हां जी
0: अशुभ ना के जी तुंदा क्या ना तुंदा
1: मेरा नाम लच्छी राम है जी
0: अच्छा लच्छी राम जी
1: छोटे बंगाल के हैं
0: अच्छा लच्छी राम जी और राजीव आजिन घर परिवार सब ठीक ठाक लच्छीराम जी कुन दिन गीत हुन्ना पसंद कर ले अच्छा लगुरी तक कचहरी साइड
1: ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲੀ ਹੈ
0: ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਿਮੀ ਜਿਮੀ ਬਰਖਾ ਲਗੋਰੀ ਗੀ ਤੁਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਲੈ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਸਨ ਕਬੂਰ ਜੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀੜੀ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੋਗੀ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ
1: ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
0: ਨਮਸਤੇ ਚਲੀ ਸ਼ੋਤੋ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਤਾ ਸੋਗੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ ਪੁਸ ਦਿਨ ਕੁੰਡ ਬੱਲੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਮਸਤੇ ਜੀ
2: हेलो नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: कैसे आप
0: हम बढ़िया जी कौन बल्लूंदे ना और कड़ी थों बल्लूंदे
2: ना साथ की वाड़ी से नहीं आ रहा कहीं से
0: अच्छा और ठीक ठाक करे लगुरेन
2: ठीक
0: करे लगुरेन
2: घर पे है
0: अच्छा
2: काम से आ रही
0: अच्छा कुंडने गीत होना पसंद कर ले वीडियो गुंजन माज इंदुनाग महाराज जी रा
2: पहला गाना आने चाहिए
0: अच्छा और कुछ जनाब
2: बस
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले तो सुई गीत है
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद चलिए तो अगले शो तो अब भी बिल्कुल कनेक्टेड थी है लेकिन डिसकनेक्ट हो चुके हैं शोधों तो सब बन रहे समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ तुम तो अपना नाचीज सचिन कपूर हा शोतों और कार्यक्रम मंच थोड़ा करे और हगू बर्दन इन द अगले शो तो आसूगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
3: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक
3: ठीक ठाक ते वल्ला ते वल्लन दे अपने प्रोग्राम हम फोन चले आए ना
0: और करे लगुरेन तो है करे करे लगुरेन मेलो
3: हेलो
0: हेलो हां जी आवाज छुंदी जी मेरी
3: हां से लिया माता रे बाजन होला
0: अच्छा अच्छा किस
3: ठीक है से लिया दादी माता रे बाजन
0: अच्छा दादी माता रे बाजन
3: ठीक है ओके
0: ठीक है जी ओके धन्यवाद चलिए श्रोतों तो सब बन रहे हैं और वेड़ी गुंजन सो गए और कुछ एक खास जानकारी अब श्रोतों तो है रहा कि चिट्टेरा जो मतलब है बल्ले सकता कहरा सो इतना ज़्यादा कि अक्की परिवार में त्राय सदस्य के ना सो इंदर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रहे पकड़े गए ना अजी बिल्कुल अरेस्ट हुए ना और मतलब तो सोचा कि इन ले 40 ग्राम चिट्टा हीरोइन की ऐसा बरामद बोया बैन बनोआ ते भाई जीजा साले भी टोले थे जीजा साला तो सलैनी रे टोले थे जो कि गिरफ्तार हुए अशोतों इन दे डिस्ट्रिक्ट कांगड़े अरे टोले थे तो अब सोचा अगर इस प्रकार होगी चिट्टा अगर फैलू करदा हा अशोतों कि अखी परिवार थो इन दे त्राई त्राई सदस्य के अंसु चुकी उगे छु कर देन तो ये चिट्टे कड़ी कड़ी अपने पाँव के सु पे सारी लैन ये वाकई में ही असु सब भी जो किया सुकर का नगर खा मतलब खाली करु करदा हा श्रोता हूँ और इंदी इन वाली जनरेशन जो किया सो बिल्कुल मतलब तो सोच लिया कि बिल्कुल खंगोली करी रखी ना इस इन वाली जनरेशन के सो तो बड़ा ज़रूरी है चिट्टे री अवेयरनेस हर किसी वास्ते है ना और ज़रूरी नहीं कि तो है ना इस्तेमाल कर देन हीरोइन रा ना इस्तेमाल कर देन सुके ना शरा ता असू बस बेचना ता असू पैसे खरे मोड़ कर देन ना तो है भी तूने अपराधी हिन तूने ही तो है भी अपराध सहने रह दंडित करने वे तो है भी उतने ही हकदार बने के छूरे न जितना कि जो पर्सन इंया हुक्की हुके नशे जो कि असो ग्रहण करु करता है सो तुम तो चलिए सब कोशिश जरूर कर दे हिन और इति मैं भागीदारी अपनी अपनी की सो सुनिश्चित कर दे इनके अह मतलब सूखे नशे जो किया सो जल्द थो जल्द ख़त्म करने की कोशिश की सो जरूर कर ले ताकि इनकी इन्हीं वाली पीढ़ी किया सो करखन करखा अच्छा महसूस करा हेल्थफुल महसूस करा खरे पावरफुल की सो महसूस करा बहरहाल कार्यक्रम जो बढ़न दिन हगूँ और हुड़न दिन तुस्वे गीत बने रहे तो सब बार जैसे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: শ্রোত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধরমশালা তো সবই টিউন কর রো রাও তো সো কে তুন্দ আপনা আর সে রেডিও জো কি সচিন কাপুর হা কার্যক্রম ইস ওয়াক্ত ইন দি আপনি গপ গেন শ্রোতাও সো চল রি হিন তুন্দ সবই রে রেডিও সেট মা বিলকুল লাইভ আর ইস কার্যক্রম রা আনন্দ তো হে বিলকুল লেও কর দহিন চলিয়ে কার্যক্রম মা আগু বড় দেন ইন দা অগলে শ্রোতা সো কে কানেক্টেড হিন নমস্তে জি
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक ने?
1: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक जी।
0: और जी कौन बोलू दे और कड़ी थों बोलू कर देन?
1: सुनील कुमार बोल रहे कोठियां जलोट दे सर।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा कोठियां जलोट वाले इंदे
1: श्रोतागण
0: जी। जनाब कौन दिन की थोड़ना तुसु?
1: ईशांत भारद्वाज जी का गाना सुनना मैं, एक भोलेनाथ जी का उच्चिया कैलाशा।
0: उच्चिया कैलाशा
1: जी
0: ठीक है जी, जरूर सुना ले तू।
1: धन्यवाद सर जी। नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी। चलिए श्रोताओं फरमाइश और दौर के सो पूरा कर दे हिन और अब इंदुनांग महाराज जी अरे फरमाइश मतलब तैयारी होती है अब फरमाइश त्या और श्रोता सूखे कनेक्टेड है। नमस्ते जी। हेलो।
2: हेलो
0: जी। नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी।
0: जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन?
2: आ दा दावा दुकान दे जी।
0: अच्छा जी कौन देने गीत होना तुसु?
2: आ तू गीत होना वादरा
0: नागरा
2: संजय जब जब करी।
0: ओहो ठीक है जी, जरूर होना ले, जरूर होना ले तुसु गीत।
2: अच्छा जी
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: शत एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही हैं। ता बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। ता कार्यक्रम जो से हगू जरूर बढ़न दे हिन श्रोताओं और तो है लाइव कार्यक्रम हूँ कर देने अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी। हेलो। चलिए इन दे श्रोता तक कनेक्टेड थी यस हो गए लेकिन डिसकनेक्ट के सो बच गया हिन। थोड़ा करे और आगू बढ़ते हिन श्रोताओं और तो सब बन रहे हैं इस समय आज जो सचिन कपूर सो के कार्यक्रम होने कर देन हिंदी अपनी गप्पा। तो चलिए जी परमेश्वर का दौर के आसो पूरा कर दे हिन और इंदुनाग महाराज जी रहेगी तो ये गीत होने देन भजन होने देन श्रोताओं।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रो रहा हूँ। सचिन कपूर बिल्कुल लाइव इस समय मौजूद है तुम सभी ने रेडियो सेट में बहुत ही प्यारे दिया गीत के सोतो है सभी हूँ अश्रोतो ही ना फुल्ला ना तोड़ मालिनी न फुल्ला बिच नाग बसते अजय भरमोरी री आवाज़ में ये गीत तू श्रोतो आइया कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ेंदे हिन और आज की मैं दस सौ तू श्रोतो की मानसून के सो थोड़ी लेट ही ना लेकिन मानसून तो हम पहले हर होटल में किया सो भूना हा पौधा रोपण जी बिल्कुल श्रोतो ग्लोबल वार्मिंग वे बढ़ते खतरे और पर्यावरण संरक्षण रह सोगी सोगी होटल वे सौंदर्यकरण री दिशा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने निगम है किया श्रोतो विकास निगम है किया सो अक्षानदार कदम चुको है श्रोतो आगामी मानसून सीजन जो हृदय हुए निगम में अपनी सभी यूनिट्स में एक विशेष पौधारोपण अभियान शुरू करने व किया सो ऐलान कर ही देता है। इस नोबल सोशल कोच जो लेकर ही किया श्रोतो सो सभी डीडीओ यूनिट मैनेजर और प्रभारी जो व्यक्तिगत ध्यान देने जो कि सो सख्त निर्देश दे देते हैं श्रोतो जो कि सभी वास्ते बहुत अच्छी गल श्रोतो अभियान में पारदर्शित और जवाबदेही सुनिश्चित करने वास्ते अधिकारी जो डिजिटल रिपोर्टिंग तो निर्देश देते हैं श्रोतो और प्रभारी जो पौधारोपण तो पहले और बाद भी तस्वीर किया सो देने हाँ ये बहुत ही अच्छी गल है श्रोतो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और इस समय तो ऐसा बन रहे आर जे सचिन कपूर सोगे उचे कैलाशा गीता री फरमाइश थी शांत भारद्वाज री आवाज़ में गीत होना चाहते हैं तैयार होने नहीं हो ये गीत छो तो बने रहे तो ये सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गहन सो चल रही है। श्रोताओं का ये कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ते हैं तो है आनंद लेव कर देने इस समय श्रोताओं की तरह। और दादी माता रा का भजन आतस भजनारी फरमाइश आए तो सो फरमाइश भी असु की असो जरूर पूरे करने या श्रोता बल देना इंसान के असो अपनी इच्छा तो ही कि असो सब कुछ चाहे सकता सब कुछ कर सकता है। अगर मेरी इच्छा कुछ करने रे बोले मेरी इच्छा कसकी होगी गुलने रे बोले मेरा मूड कसी होगी बनने रहना बोला या मेरा मूड कसी होगी विकिया सुकने रहना बोला तो सो मेरे अकॉर्डिंग बोना मेरे अकॉर्डिंग चलना है ना। लेकिन ऐसा चाहता हूँ कि समाज में रहना था समाज वे तौर तरीके और सोसाइटी सो के रहना था सो मिलन अनुसार किया सो बुना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुंदा है शो तो प्रत्येक नागरिक जो है ना अगर तो है मिलन अनुसार हिंद शो तो और बढ़िया रंद हिंद समाज तुम तारीफ की ऐसा ज़रूर करता है। बहरहाल लेकर ही चल दे तू सब भी जो इस प्यारे दे भजनारी किनारी और शुद्ध बिल्कुल बिल्कुल अब भजना था बाद अब टाइम भी बचेगो कि इजाज़त ले लेंदे तू सुथो है ना जी। हाँ जी बिल्कुल इजाज़त लेने वे समय की है शुद्ध सो बुझेगो हाँ ता गंदे गंदे ही बलना चाहूँ तू सब भी जो फिर मुलतन छी अदम अट हंसते रहो कर मुस्कुरंदे रहो कर श्रोतो और बिल्कुल अपना ख्याल किए सो जरूर रखा अपने माता पिता का ख्याल किए सो जरूर रखा श्रोतो बहुत इंपॉर्टेंट है। और माता पिता भी अपने बच्चे का ख्याल किए ना सो जरूर रखना माता पिता किए ना सो भी अपने बच्चे हो गए लाड़ प्यार हो गए क्या ना सो जरूर रहन बेशक सो जितने भी मोटे बुच गिल है लेकिन तुम्हें प्यार की आवश्यकता की है उतनी ही बच्चे जो है जितनी बुजुर्ग जो बुंदे आ माता पिता रे बरहाल बुजुर्ग जो बंदे अपने बच्चे रे माफ़ करा बरहाल आने लो इजाज़त नमस्ते।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या,
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
16: गजब बेइज्जती है।
17: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि, और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जो कि होना भी चाहिए। इंसान को खुश और तंदुरुस्त जो है वो रहना चाहिए इंसान को, तभी इंसान जो है वो कुछ भी अपनी लाइफ में मुझे लगता है तभी वो बेहतर कर सकता है जब वो खुद खुश रहे, खुद जो है वो तंदुरुस्त रहे, है ना। तो खुश और तंदुरुस्त रहना मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। श्रोता हूँ तो आइए कुछ एक जानकारियाँ जो है वो हम आप तक पहुँचाएंगे और उससे पहले श्रोता हूँ आप सभी को हम कुछ और भी चीज़ें जो है वो बताना चाहते हैं। कुछ और चीज़ें जैसे कि मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम अब फेसबुक के माध्यम से लाइव आपसे जुड़ने वाले हैं है ना, और जो जानकारी आप तक पहुँचेगी वो जानकारी हम नियंत्रण प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोताओं तक भी वो जानकारी जो है जो फेसबुक के माध्यम से हमारे श्रोता हमारे साथ बने होते हैं उन तक भी जो है वो जानकारी ज़रूर पहुँचे श्रोताओं, ये हमारा प्रयास रहता है। तो चलिए लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं, और बिल्कुल हम कहते हैं ना कि हमारा प्रयास रहता है कि फेसबुक के माध्यम से भी हम जानकारी जो है वो ज़रूर पहुंचाएं अपने श्रोता तक। तो इस समय मैं आप सभी को बताना चाहता हूं धर्मशाला में हम रह रहे हैं और धर्मशाला का मौसम जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा बना हुआ है, बारिश जो है वो लगी हुई है और देखिए जहाँ पर इंसान इतनी मतलब बाकी हर स्टेट में ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वहाँ पर इस समय जो धर्मशाला का मौसम है वो बहुत कमाल है। इस समय अगर मैं बात करूँ श्रोता हूँ तो धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बना हुआ है, हल्की बारिश जो है वो हो रही है श्रोताओं, और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जो है वो बना हुआ है। और अगर ह्यूमिडिटी के स्तर की मैं बात करूँ तो ह्यूमिडिटी का स्तर लगभग 85% के आसपास जो है वो बना हुआ है। मौसम काफ़ी ठंडा है और सुहावना बना हुआ है इस समय धर्मशाला में, इसलिए तो धर्मशाला बहुत खूबसूरत है, इसलिए तो धर्मशाला अपने आप में बहुत कुछ जो है वो बयां करता है, बहुत कुछ जो है वो लिखता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसे संभाल कर रखना है, हमें अपने धर्मशाला को संभाल कर रखना है, यहाँ की प्रकृति को जो है वो संभाल कर रखना है, यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो हमें भगवान की ओर से प्रकृति की देन जो हमें मिली है उसे हमें संजो कर रखना है। ये कार्य जो है वो हमें करना है, वो ये कार्य केवल किसी एक संस्था को या किसी एक इंसान को नहीं, हम सभी को इस कार्य को जो है वो बड़ी बाखूबी से करना है और खूबसूरत तरीके से करना है श्रोताओं। तो आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो चलिए जी बहुत प्यारे प्यारे से गीत जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, हम आप तक लेकर आए हैं और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे श्रोताओं आज के विचार की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ यू।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। आइए श्रोता हम कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी हमारे साथ बाखूबी बने हुए हैं इस समय, तो आज के विचार की ओर लेके चलते हैं। कहते हैं अपनों के साथ और उनके प्रति प्रेम ही जो है वो जीवन की असली पूंजी है। जी बिल्कुल, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, रिश्ते खून के नहीं श्रोताओं एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, वाकई में ना, अगर एहसास है तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं और अगर एहसास नहीं है तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। ये एक एहसास ही तो है श्रोताओं जो हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाता है, हमें एक दूसरे के साथ जो है वो फील करवाता है ना। तो रिश्ते खूबसूरत होते हैं लेकिन उन्हें खूबसूरती के साथ जो है वो संजोए रखना होता है, उन्हें खूबसूरती के साथ जो है वो बनाकर रखना होता है, तभी रिश्ते जो है श्रोताओं वो खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। रिश्तों में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और ये दो बातें अगर किसी भी रिश्ते में है तो वो रिश्ता लॉन्ग टर्म जो है वो बढ़िया टिका रहता है और उस रिश्ते में जो है वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है श्रोताओं। तो बहरहाल कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा अब हम धीरे धीरे खोलना जो है वो शुरू कर देंगे श्रोताओं। अभी आपने आज का विचार जो है वो सुना, लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर। बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपने बन के और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त आप सभी बिल्कुल बाखूबी सुन रहे होंगे। गुड इवनिंग धर्मशाला, आइए इस गीत का आनंद जो है वो फिर से लेते हैं। श्रोतों आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने बन की, और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ आप बने हुए हैं जुड़े हुए हैं। आइए श्रोता, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो इस समय ये गीत जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने दिनों के बाद मिले हो, क्योंकि श्रोता हम तो आपके साथ रोज़ ही मिलते हैं। जितने भी हमारे श्रोता हमें सुनते हैं रेडियो के माध्यम से, इनके साथ तो हम रोज़ ही रूबरू होते हैं, है ना। और बेशक हम यहाँ पर कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि नहीं आते हैं, रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना आपसे जो है वो रूबरू होते हैं। ये बहुत प्यारा सा गीत था जो कि कहते हैं ना कि हर परिस्थिति के लिए जो है वो इंसान को तैयार होना चाहिए। श्रोताओं, हर परिस्थिति के लिए इंसान को बखूबी तैयार होना चाहिए। बहरहाल हम आपको लेके चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम के अब इस प्यारे से गीत की ओर, माफ़ करें जानकारी की ओर। दाढ़ीशिला चौक में जो है वो घर की दीवार से दे मारी कार। श्रोताओं जी आइए, ज़िला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते दाढ़ीशिला चौक में मंगलवार को सड़क दुर्घटना का मामला जो है वो सामने आया। श्रोताओं जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते हुए सड़क से बाहर निकलकर लोगों के घर की चार दीवारी को तोड़ते हुए वहां फंस गई। श्रोताओं गरिमत रही कि गाड़ी नीचे नाले में लुढ़की नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं वाहन में सवार चालक व सवारों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्होंने जोनल अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार के बाद घर जिन्हें जोनल अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार के बाद जो है वो घर भेज दिया गया है। उधर इस संबंध में पुलिस थाना धर्मशाला में कोई भी मामला जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। श्रोताओं तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और आइए कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। ये दिल दीवाना है ना, ये प्यारा सा गीत हम आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं, और इसके बाद कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा आप सभी के वीडियो सेट पर।

শোধ এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগা হার্টজ পর বেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা। आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन को और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं आपके अपने वीडियो सेट पर वेडी गुंजन धर्मशाला में। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए जनाब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, नौसेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। ये भर्ती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के डिप्लोमा धारकों के लिए है। श्रोतों, ये भर्ती अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के बैच 21-2027 और 2-2027 के तहत आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। श्रोतों, उम्मीदवार का किसी अमान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है वो 10वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए वो ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और साथ ही श्रोतों, आईआईटी से किसी भी आईआईटी से जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है वो संबंधित विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा और उसमें भी कम से कम 50% अंक जो है वो होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। साथ ही 15 से 20 पुशअप्स और 15 सेट अप पुशअप के जो है वो करने होंगे। शो तो है ना जी। और भर्ती का पहला चरण इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा श्रोतों, जो अगस्त 2026 में आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। श्रोतों, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और संबंधित डिप्लोमा ट्रेंड से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। परीक्षा में सफल उम्मीदवार को दूसरे चरण के लिए जो है वो बुलाया जाएगा श्रोतों, जिसमें फिजिकल और फिटनेस टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे। आयु सीमा 1-27 बैच के लिए। उम्मीदवार का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए। 2-2027 बैच के लिए जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच जो है वो होना चाहिए। तो ये थी जानकारी श्रोतों जो आपने प्राप्त की है वेड़ी गुंजन धर्मशाला के माध्यम से अपने अपने वीडियो सेट पर। आइए जी, कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को लेके चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की ओर।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को लेकर चलते हैं अगली जानकारी की ओर। डॉक्टरों की वापसी से टीएमसी के कार्डियोलॉजी विभाग में जो है वो सुधार। श्रोताओं, डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में अब बेहतर सुविधाएं मरीजों को मिलने शुरू हो गई हैं। श्रोताओं, एक तरफ दिन प्रतिदिन डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है, दूसरी तरफ टेस्टों से लेकर स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। इस समय टीएमसी के कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। एचओडी का कार्यभार डॉक्टर नरेश राणा संभाल रहे हैं, इनके साथ ही सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अम्बुधर भी जो है वो नीदरलैंड से फिलोसफी करके जो है वो वापस लौट आए हैं श्रोताओं, और 22 जून को ज्वाइनिंग भी उन्होंने कर ली है। उससे पहले डॉक्टर सोनी तथा डॉक्टर लक्की ने भी ज्वाइन कर लिया था श्रोताओं। टंडा मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में सभी चारों डॉक्टर वापस आ गए हैं और मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। टेस्टों के लिए भी मरीजों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है और वातावरण भी अनुकूल जो है वो हो चुका है श्रोताओं। इसके साथ और अन्य डॉक्टर कार्डियोलॉजी विभाग को छोड़ कर चले गए थे, पूर्ण वापस वापस आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले कार्डियोलॉजी विभाग में वातावरण अनुकूल ना होने के कारण एक महिला सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और नौकरी को छोड़ दिया था, लेकिन अब प्रशासनिक परिवर्तनों के मद्देनज़र नौकरी छोड़ने के बाद अब फिर से नौकरी को ज्वाइन करने का आग्रह किया गया है। महिला डॉक्टर ने आग्रह किया है कि मेरे

इस्तीफा को वापस लिया जाए, क्योंकि अब टंडन मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में वातावरण बेहतर अनुकूल माहौल हो गया है। अगर ये महिला डॉक्टर भी वापस ज्वाइन कर लेती है तो डॉक्टर की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी स्वतः, जिसके कारण मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि जिस मरीज का चेकअप होगा उसका इको जैसे टेस्ट उसी दिन हो जाएंगे स्वतः, अन्यथा इको जैसे टेस्ट के लिए 3 से 6 महीने जो है 3 से 6 महीनों की तारीख मिल रही थी। तथ्य तो विचारण भी हैं कि जहां कुछ समय पहले भी डॉक्टर वापस से चले गए थे, कुछ बीमार हो गए थे, अब सब ठीक हो गया है और वापस भी आ गए हैं, कुछ वापस आने के लिए आतुर हैं। वातावरण अच्छा ही होना चाहिए और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। वातावरण तो श्रोताओं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट जो है वो वाकई में ही अच्छा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण जो है वो प्यारा होना चाहिए, माहौल खुशनुमा होना चाहिए, तभी जो है वो काम करने का मज़ा आता है, तभी जो है वो श्रोताओं ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है ना जी। तो बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आर जय सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं जनाब अपने अपने रेडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आपको अगली जानकारी की ओर। जी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी धर्मशाला के लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री किशन कपूर जी की 75वीं जयंती के पावन अवसर पर जो है वो निशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर जी कल दिनांक 25 जून को होगा। ये रक्तदान शिविर श्रोताओं आपका एक छोटा सा योगदान किसी के जीवन को बचा सकता है, किसी के परिवार की खुशी को बचा सकता है और किसी के परिवार में खुशियां जो है वो ला सकता है। तो रक्तदान शिविर, रक्तदान महादान। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ निशुल्क चिकित्सा, निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। वहाँ पर हड्डी एवं जोड़ रोग के विशेषज्ञ जो हैं वो उपस्थित होंगे, है ना, शिशु रोग विशेषज्ञ जो हैं वो उपस्थित होंगे, सामान्य चिकित्सक वहाँ उपस्थित रहेंगे, श्रोताओं व्हील चेयर वितरण वहाँ पर होगा और इस तरह की चीज़ें, निशुल्क चिकित्सा उपकरण वितरण वहाँ पर होगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी प्रातः 10 बजे और स्थान रहेगा स्वर्ग श्री किशन कपूर निवास। जी बिल्कुल उनके अपने ही घर पर जो है वो स्थान रहेगा, स्वर्ग श्री किशन कपूर निवास के घर पर। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं शाश्वत कपूर को, नंबर रहेंगे 94189003007 पर। जी जितने भी मेरी माताएं बहनें इस समय मेरी आवाज़ को सुन रही हैं वो बिल्कुल अपना फ्री चेकअप करवाने के लिए कल दाड़नू जा सकती हैं। दाड़नू में जहां पर स्वर्ग श्री किशन कपूर जी का घर है वहां पर आप जा सकते हैं, आपका बिल्कुल फ्री जो है, निशुल्क जो है, बिल्कुल फ्री आपका चेकअप होंगे वहां पर, आपको फ्री दवाइयाँ जो है वो दी जाएंगी। और अगर आप रक्तदान करना चाहते हैं तो वहां पर रक्तदान शिविर भी होगा। जी बिल्कुल हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ वहाँ पर उपस्थित होंगे और शिशु रोग विशेषज्ञ वहाँ पर उपस्थित रहेंगे श्रोताओं। तो नंबर मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, 94189003007 पर शाश्वत कपूर को आप कॉल कर सकते हैं श्रोताओं और बिल्कुल आपकी सहभागिता ही इस जनसेवा अभियान की सफलता रहेगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आई श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक खास जानकारी के साथ आपको एक बार फिर से रूबरू करवाते हैं। रेडियो के माध्यम से आप सभी लगातार रूबरू हो रहे हैं जानकारी के साथ, लेकिन फेसबुक के माध्यम से भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप सभी रूबरू हों। तो मानसून में स्कूल सुरक्षा पर शिक्षा विभाग सख्त, रोज देनी होगी नुकसान की रिपोर्ट। जी बिल्कुल श्रोताओं, ये जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुंचाते हैं। मानसून सीज़न को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ज़िला कांगड़ा के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। श्रोताओं, उपनिदेशक उच्च शिक्षा माध्यमिक कांगड़ा कार्यालय ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को प्रतिदिन आपदा एवं मानसून से संबंधित नुकसान की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया है। श्रोताओं, विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तब भी निर्धारित प्रारूप से नील रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी। रिपोर्ट भेजने में लापरवाही या तथ्य छिपाने की स्थिति में संबंधित प्रधानाचार्य अथवा मुख्य अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, तो अब सभी स्कूलों को जो है वो रोज़ाना जो है बेशक वो नील रिपोर्ट ही भेजें अगर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से जो है ये सख्त कार्रवाई हो रही है और रोज़ाना देनी होगी अब नुकसान की रिपोर्ट। श्रोताओं, तो चलिए बहुत अच्छा कदम जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम इस समय चला हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला। यूं ही चलते रहेंगे, यूं ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और लेके चलते हैं अब आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में समाचार सुनने का।
1: आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत रुख दोहराया, पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का भविष्य है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय

नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ

0: ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बताए
6: श्रोतो, अंतराल के बाद आप सभी का वेड़ी गुंजन धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला। आइए कुछ अब और समाचारों की ओर लेकर चलते हैं। अब आपको श्रोतों खेल समाचारों की ओर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि मेहनत अगर आप लगातार एक क्षेत्र में करते रहो तो सफलता जो है वो ज़रूर हाथ लगती है, सफलता आपके कदम जो है वो ज़रूर चूमती है श्रोतों। लेकिन बात वही है ना कि आपको सफल होना है, उसके लिए आपको प्रयास जो है वो बहुत पहले से करना पड़ेगा, बहुत पहले से उस तरह के आपको प्रयासरत जो है वो रहना पड़ेगा श्रोतों। हाँ जी बिल्कुल, खेल समाचारों की मैं बात कर रहा हूँ। इस बीच में अगर मैंने ये लाइन कही है तो ये लाइन मुझे सीधा जर्सी नंबर 3 पर ले जाकर मेरी निगाहें जो है वो टिका देती है। जर्सी नंबर 3 सूर्यवंशी। जी बिल्कुल, ये वही 15 साल का लड़का है, ये वही 14 और 13 साल का लड़का था जब इसने आईपीएल खेलना शुरू कर दिया था, और 15 साल के सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिल गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, राजस्थान रॉयल की टीम की ओर से, फ्रेंचाइजी की ओर से जो है ये खेलते हैं, और लास्ट टाइम भी इन्होंने अद्भुत, बाकमाल, लाजवाब, सराहनीय जो है वो कार्य किया था अपनी टीम के लिए, जिस वजह से इन्हें अब वैभव सूर्यवंशी को जो है वो टीम इंडिया की 3 नंबर जर्सी मिली है। और कहना यह है कि बहुत टाइम तक जो है वो वैभव सूर्यवंशी उस शर्ट को, उस 3 नंबर जर्सी को जो है वो देखते रह गए। वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जो है वो रवाना हो चुके हैं श्रोतों। BCCI की ओर से जो है वो उन्हें 3 नंबर जर्सी होटल भिजवाई गई श्रोतों। जिसे सूर्यवंशी जो है वो काफ़ी देर तक देखते रहे। सूर्यवंशी को जर्सी भारतीय टीम में जो है वो बिल्कुल मिली है, और ये वाकई में ही बाकमाल है श्रोतों, बहुत कमाल, बहुत कमाल है ये। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 15 साल का ये लड़का, 15 साल के सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिल गई है। देश की नेशनल टीम में सेलेक्ट होने वाले वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं श्रोतों। भारतीय टीम का आयरलैंड का दौरा 26 जून से शुरू हो रहा है, और इंग्लैंड का दौरा 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो उसमें सूर्यवंशी आपको 3 नंबर की जर्सी में जो है वो खेलते नज़र आएंगे। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम चला हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और गीत संगीत का दौर जो है वो बिल्कुल लिए हुए चलता रहेगा श्रोताओं, तो लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर श्रोता कार्यक्रम इस समय चला हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला। और आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी को लेके चलते हैं श्रोतों कुछ एक और जानकारी की ओर। जी बिल्कुल, ऋषभ पंत की हुई श्रोतों घर वापसी, खेल समाचारों से जुड़ी इस समय आप जानकारियां सुन रहे हैं। ऋषभ पंत की हुई घर वापसी, 12 करोड़ का नुकसान के साथ दिल्ली कैपिटल्स में लौटे। 13.50 करोड़ में लखनऊ के नए नवाब बने कुलदीप यादव। श्रोतों आईपीएल 2026 के बाद दोनों टीमों के बीच हुआ बड़ा ट्रेंड। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर जो है वो खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच ये फैसला हुआ श्रोतों इस आईपीएल के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी थी। लखनऊ ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए की खरीदा था। पंत को जो है वो 27 करोड़ रुपए देकर जो है वो ख़रीदा गया था, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी श्रोतों। अब ट्रेंड के बाद वह 15 करोड़ रुपए की फीस पर दिल्ली से जुड़े हैं। कहाँ 27 करोड़ और कहाँ 15 करोड़ की फीस पर दिल्ली से जो है वो जुड़े हैं। वहीं कुलदीप यादव 13.50 करोड़ रुपए की अपनी मौजूदा फीस पर लखनऊ में शामिल हुए हैं। चलिए जी, ये करोड़ जो है श्रोताओं, इनमें मेहनत जो है वो ज़रूर है, आवश्यकता ज़रूर है, मेहनत बहुत है, आवश्यकता मेहनत की बहुत ज़रूरी है, इसलिए करोड़ रुपया जो है वो जाता है, वो इनको मिलता है श्रोताओं। और ये मिलना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए इनका संघर्ष बहुत है, इनकी मेहनत बहुत है, और बिल्कुल इनकी मेहनत और इनका संघर्ष जो है वो बहुत मायने रखता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आप सभी बने हुए इस समय वीडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी श्रोताओं को। जी बिल्कुल, गीत संगीत का पिटारा जो है वो खुलता रहे तो मज़ा भी आता है जानकारी सुनने का, है ना जी। और अगर हम आप तक मात्र जानकारियां ही पहुंचाते रहें तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है वो बोर ज़रूर हो जाएंगे और चैनल ज़रूर बदल सकते हैं आप। लेकिन चलिए, ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप बिल्कुल मेरे साथ लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। चलिए लेके चलते हैं श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही आपके अपने रेडियो के साथ।

श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। चलिए, बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। श्रोताओं, आओ सुनाओ प्यार की ये कहानी, और ये कहानी बहुत प्यारी है श्रोताओं। तो आइए, फिलहाल तो हम आपको लेके चलते हैं श्रोताओं अगली जानकारी की ओर। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। जानकारियों का पिटारा जो है वो लगातार खुलता जा रहा है, और साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी खुलता जा रहा है, और इसी तरह खुलता रहेगा श्रोताओं। लखनऊ अग्निकांड के 4 आरोपी जेल भेज दिए गए हैं श्रोताओं, और ये वीडियो आपने बिल्कुल देखी होगी। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था श्रोताओं, है ना, ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी श्रोताओं। किन्नौर में टूटा 190 फुट लंबा बेली ब्रिज श्रोताओं, सतलुज में गिरा डंपर। इसी की तरह और भी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। सुजानपुर में 11वीं कक्षा के छात्र ने लगाया फंदा श्रोताओं, ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचे कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है। तो बताना चाहते हैं, थाना सुजानपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटलादर में जो है वो किराए के मकान में अपने परिजनों के साथ रह रहे 15 वर्षीय 11वीं कक्षा के छात्र ने घर के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली श्रोताओं। पुलिस को इस मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें अपनी मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। छात्र सुजानपुर की सीमा से सटे जिला कांगड़ा के आलमपुर स्थित एक निजी स्कूल का छात्र था। छात्र मूल रूप से ज़िला कांगड़ा का रहने वाला था, और पटलादर में अपनी परिजनों के साथ जो है वो किराए के मकान में रहता था। मंगलवार सुबह मृतक छात्र के परिजन और स्थानीय लोग स्कूल आलमपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। परिजनों का कहना है कि छात्र को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उसने ये कठोर कदम उठाया। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने कहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई गई। पोस्टमार्टम के दौरान भी स्कूल का कोई प्रतिनिधि मौजूद

नहीं था। लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक मामले में न्याय नहीं मिलता, इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हो गया है श्रोतों। चलिए तो कार्यक्रम इस समय आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। अब लेके चलते हैं आप सभी को श्रोतों इस प्यारे से गीत की ओर।

की आनंद हम सभी जो है वो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लेंगे श्रोताओं इस गीत का आनंद। आप सभी बने हुए हैं, खिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ।

एफएमएनडी क्यानो दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर वेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेली जो कि सचिन कपूर। आई जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है वेली गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। वापस मिलते हैं अंतराल के बाद।

हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।

0: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
1: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
0: या आपको एक फोन आएगा।
2: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
0: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
2: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
1: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
2: रिसीव करते वक्त नहीं।
1: तो याद रहे,
3: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
4: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
5: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
4: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
6: आप चिंता ना करें।
4: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
5: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
6: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
7: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
5: तुम क्या खड़ा हो?
7: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
8: ले जाए पक्का?
7: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
9: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
10: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
11: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
10: हाँ बोलो।
11: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
10: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
11: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
7: गजब बेइज्जती है।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: दीप सहोत्रा बने उपाध्यक्ष, वहीं चंबा पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला में मारकंडा नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन। हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ। किन्नौर जिला के रारंग में राज्य स्तरीय गुरु सांगिस पर्व संपन्न। छम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज रिकांगपियो में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने आज आधी रात से चक्का जाम करने के फैसले को वापस ले लिया है और अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अब से कुछ देर पहले शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कर्मचारी यूनियन ने यह निर्णय लिया। ये बैठक सफल रही और सरकार ने कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को मान लिया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज दोपहर शिमला में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारी यूनियन से जनहित में चक्का जाम करना की फैसले को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू किया है और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया था।
1: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: नाहन नगर परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। कांग्रेस और भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 7-7 वोट प्राप्त हुए। ऐसे में ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान को अध्यक्ष और भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष उपमा धीमान ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी।
2: हम सभी का जितने भी तेरा पार्षद है और इसमें कोई काम में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम सब एक हैं। इलेक्शन जब तक था तब तक की बात थी, अब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा समर्थित पार्षदों को डरा धमका कर अपने पक्ष में करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में से भाजपा समर्थित 7 पार्षद जीते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कानून में तोड़ मरोड़ कर स्थानीय विधायक को वोट का अधिकार दिलाया है।
3: हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, परंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी पूरी कांग्रेस के भारी भरकम दबाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट दिया। हिमाचल के इतिहास में यह बात दर्ज हो जाए कि किस तरह से जनता के मत को हाईजेक किया जाता है, वो हाईजेक किया गया।
0: उधर चंबा पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्यों ने बाजी मारी है। आज हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर काजल कुमारी और उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह विजयी रहे। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 9-9 मत पड़े और पर्ची सिस्टम के माध्यम से भाजपा समर्थित काजल कुमारी विजयी रही। उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह ने 2 मतों से जीत हासिल की। भाजपा कल 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कल शिमला में होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल मुख्य वक्ता होंगे, जबकि 27 जून को पालमपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने आज कालाअंब पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मारकंडा नदी के ऊपर बने 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन किया। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज व्यस्तता के कारण इस पुल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण नहीं कर सके। इस मौके पर सुरेश कश्यप ने कहा कि इस पुल के बनने से हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए भरपूर धनराशि दे रही है।
4: बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे जिला सिरमौर और विशेष रूप से देहरादून को जाने जाने वाले हमारे यात्री हैं या पर्यटक हैं उनको होने वाला है। ये पुल जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और लगभग 3.5 वर्षों में इसको पूरा किया, 2022 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 22,190 करोड़ निवेश के लगभग 35 प्रोजेक्ट जो कि 545 किलोमीटर के लगभग हैं, इसका जो है काम चल रहा है।
0: किन्नौर जिला के पूह उपमंडल की रारंग पंचायत में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु सांगेश पर्व आज बौद्ध परंपराओं के अनुसार संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खराब मौसम के कारण समापन समारोह में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में बौद्ध गुरु छोगेन रिंपोछे ने इस पर्व का दीप प्रज्वलित कर समापन किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है और 8वीं शताब्दी के महान आचार्य गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। समापन समारोह में छम नृत्य और किन्नौर का प्राचीन रोला रोलाने नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत तो विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आज रिकॉन्पियो में ITBP के बेस कैंप में समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्रों में बिताए अपने अनुभव साझा किए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण और सीमावर्ती गांवों के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ITBP के उप कमांडेंट वरेंद्र सिंह और माई भारत के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा भी इस मौके पर मौजूद रहे। राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद के विरोध में निगम कर्मचारी महासंघ ने आज धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुमराम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुल्लू, मनाली, रोहडू, रामपुर और कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगम के होटलों को बंद करने या निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों व प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और BOD की मंजूरी के बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। हुकुमराम ने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम घाटे में नहीं है।
5: आज प्रदेश सरकार हमारे जो 8 होटल है उन्हें O&M बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो कॉरपोरेशन है वो घाटे में नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि जब से ये O&M की प्रथा सरकार ने लाई है, ना तो ये BOD में ये पास होके गई है, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंडे होते हैं वो BOD ही उसके फैसले लेते हैं जो कि हमारे HPTDC के हैं। और इन्होंने बीच बीच में हमारी जो बुकिंग है वो भी बंद कर दी है। इसके बावजूद भी हमारे को ये पर्यटन निगम को ये बोलते कि घाटे में जा रहा है। हमने जब से सरकार बनी है हमने कहा कि हमें 50 करोड़ की आवश्यकता है। अगर ये 50 करोड़ अगर आप हमारे दी जाएगी इसकी ग्रांट के तौर पे, तो मेरे को लगता है कि हमारा टूरिज्म फिर से एक बार फिर अच्छी अपनी पटरी पे आ जाएगा।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला में चुवाड़ी के छिंज मेले के स्वरूप को बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने आज इस पारंपरिक छिंज मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पठानिया ने कहा कि ये छिंज मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है और इसमें देश के कई नामी पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज ऊना जिला के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय जिला स्तरीय पीपलू मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने तनोली से बलह खालसा गांव को जोड़ने वाली सड़क को मजबूत करने के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। HRTC कर्मचारी यूनियन ने चक्का जाम करने का फैसला लिया वापस। अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे कर्मचारी। कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान चुनी गई नाहन नगर परिषद की अध्यक्ष। भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा बने उपाध्यक्ष। वहीं चंबा पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला में मारकंडा नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन। हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ। किन्नौर जिला के रारंग में राज्य स्तरीय गुरु सांगेश पर्व संपन्न। छम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज रिकॉन्पियो में संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

शुद्ध एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय चला हुआ है। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय जो है शुद्ध वह हो चुका है और इस आवाज़ को यानी कि सचिन कपूर की आवाज़ को अब आप सुनेंगे कल। और तब तक मैं यानी सचिन कपूर आपसे लेता हूँ अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन में सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है।
5: रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हों।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
17: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हो।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
17: गजब बेइज्जती है।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।